0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution।
2: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है. ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है. लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं. तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है. तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद. अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ. AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ. AE Power, the ultimate power solution.
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: Tune in to One Above FM 101.

Moving Hotwired Radio. Dave's best music. U101. Electric.

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतवाज़न अवाम दोस्त और तरक्की पर मबनी वफाकी बजट पेश करने पर हुकूमत की मालियाती टीम की कोशिशों को सराहा है। सुनिए पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतवाज़न अवाम दोस्त और तरक्की पर मबनी वफाकी

0: आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 3 मैच खेले जाएंगे। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे क्यों जी कोई शक है क्या?

Moving. Hot Wired Radio. Dave's best music. U101. Electric.

0: पे अप्रूव हुए हैं, 11 अरब रुपए डिसबर्स हो गए हैं, और इसी तरह के खानदानों को गए हैं जिनको 1 करोड़ रुपए तक की रकम 5% के ऊपर मिल सकती है फिक्स, रिगार्डलेस के पॉलिसी रेट कहां पर है। पहले 10%, 5% का रेट है, और इसके लिए भी इस बजट के अंदर 71 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। तो इसमें उमर साहब हमने पूरी कोशिश की है, पिछले साल सैलरीड क्लास में तो अब तकरीबन 2 सालों में सबको रिलीफ मिला, और बिल्कुल बिस्प के जरिए, अपना घर स्कीम के जरिए, और आपको बकिया यूथ प्रोग्राम्स में भी, यूथ स्कीम्स में भी इसका आंसर नजर आएगा। बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं और इंशाल्लाह इसके असरात सारे हमारे बहन भाई और बुजुर्ग महसूस करेंगे। जी
1: जी, गुजारिश है कि एक ही प्लीज सवाल करें ताकि सब दोस्तों को मौका मिले। गुलाम मुर्तजा, एक न्यूज।
2: जी, मेरा सवाल आपसे खसूसी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है कि जो मिनिमम वेज है वो तो आप अनाउंस कर देते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं पे वो इम्प्लीमेंटेशन के मराहल से नहीं गुजरती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने कोई ज़्यादा रिलीफ फ्राहम नहीं किया, बिजली गैस और इस तरह के जो मामला थे उसमें लोग, आप भी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से ही हैं तो आपको भी अंदाज़ा है कि वहाँ लोगों की हालत क्या है, बिजली बिलों की और गैस के बिलों की और स्कूल फीसों की, यानी कि आम आदमी का बजट नहीं लगता। आल्दो के जो क्वेश्चन आपके पास थे, जो आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट बिल्कुल बैलेंस बजट की सूरत में नज़र आ रहा है, लेकिन स्पेशली फॉर द सेक ऑफ नॉर्मल पीपल, जो हम जैसे आम दरमियाने लोग हैं, उनको इस बजट में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती है कि आपने, और दूसरा आपने डेवलपमेंट बजट को कट लगाया, 1000 अरब तक ले आए, ना स्कूल बनेंगे, ना कॉलेज बनेंगे, ना यूनिवर्सिटियाँ आएंगी, ना अस्पताल बनेंगे। तो ये समाजी सेक्टर को आप जब GDP रेशियो बढ़ाते हैं अपनी टैक्स टू GDP, तो आपने समाजी सेक्टर को तो साथ साथ लेके चलना होता है, अस्पताल, एजुकेशन, उसके मुताबिक नहीं लगता ये सर। थैंक यू।
3: आपके एक्चुअली सवाल में कुछ 2-3-4 सवाल हैं। एक का तो देखें, अभी बिलाल कियानी साहब ने बड़ा उसका मुफसल जवाब दिया है ऑलरेडी, कि इसको जिस तरह मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा था कि सिर्फ ये टैक्सेशन का मामला नहीं है, फाइनेंसिंग का मामला नहीं है, टैरिफ का मामला नहीं, पूरा पैकेज को आप देखें तो हर जगह वेदर इस आर लोअस्ट रंग या लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या हो रहा है। क्योंकि ये देखें, जब आपने ये घरों की भी बात की है, अपना घर की बात की है, बड़े शहरों में मुझे समझ आती है कि 1 करोड़ रुपया शायद कम मालियत के घरों में हो, पर जहाँ माशा हम बात कर रहे हैं जिस ज़िले की, अप टू 10 मिलियन इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट, और 5% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो ये अपना घर स्कीम का भी उसमें जिक्र है। देखिए, जहाँ तक PSDP का ताल्लुक है, मैं इसमें क्वाइट क्लियर हूँ कि हमें एज वी मूव फॉरवर्ड 2 चीज़ों का हमने ज़हन में रखना है, क्योंकि इस साल खुद कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सूबों ने काट कर हमें दिया है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, लेकिन अगर इस फिस्कल ईयर में आप देख लें फॉर द इंटायर कंट्री, आप सिर्फ PSDP पे ना जाइए, फॉर द इंटायर कंट्री वी हैड 4.3 बिलियन रुपीज़, ठीक, ये 12-13 बिलियन डॉलर बनता है। अगर हम इसको प्रायोरिटाइज करें, जिन मंसूबों पे लगाना है और जिन सेक्टर्स पे लगाना है, ये अगर हम खर्चना भी चाहें तो एक साल में खर्चना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और उसमें कोई मुझे मुजायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का, कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यह करके दिखाया है। पाकिस्तान ये PPP मॉडल उन्होंने खास तौर पे जो थर के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं खुद उनमें जब प्राइवेट सेक्टर में था, बोथ फ्रॉम अ डेट एंड इक्विटी साइड, यू नो एट दैट टाइम दैट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड इनटू दैट। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो अब देना है ना जी, वो जो सारा कुछ हम जो कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि अब आप आगे लेकर आएँ, और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहाँ कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। दैट्स अ पब्लिक गुड एंड वी शुड टेक इट अप एज द गवर्नमेंट एज अ पब्लिक गुड। लेकिन जो ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ तो आप प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर आएँ और प्राइवेट सेक्टर उसको कमर्शियली इसको आगे लेकर चलें। तो मेरा ये बस ये 2 गुजारिशात थी जी आपके सामने।
4: थोड़ा सा ऐड करूँगा, मेरा ख्याल है मैं जब मैं बात करते हैं।

0: درست هر وقت.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101
3: FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: पर्टनेंट सवाल है। बहुत लोगों का ये स्केप्टिसिज्म रहा है इस हवाले से कि माजी में बड़ी स्कीमें हुई हैं तो ये वाली क्यों कामयाब होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत हमारी दुकानदारों के साथ, अंजुमन ताजरान के साथ शुरू हुई थी, ये कोई इस मकसद के साथ नहीं हुई थी कि हमने हर सूरत इस तरह की स्कीम लेके आनी और उसको थोपना है। बाकायदा इस बात से आगाज़ हुआ कि किस क्या वजह है कि माजी में दुकानदार नहीं आए, क्या वजह है कि माजी की स्कीमें फेल हुई, और इस बात को हम दुकानदारों के साथ आगे लेकर चले और उनके साथ मशावरती अमल से हमने एक चीज़ तय की जिसमें उनके लिए भी इंसेंटिव है आने का, और हम समझते हैं कि एट स्केल वो खुद फिर इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जब हमने स्कीम का ऐलान किया तो अंजुमन ताजरान की दोनों तंजीमों ने फॉरवर्ड आके उसको एक्सेप्ट किया आगे आके, और उन्होंने अपने साथियों को भी ये बताया कि इसमें आपके ये फवायद हैं। एक चीज़ मैं आपको कैरेट एंड स्टिक के हवाले से मेहताब भाई ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो साथी इसमें नहीं आता, एक तरफ तो फाइलर्स हैं, मौजूदा फाइलर्स हैं जो स्कीम में आ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी वजाहत कर देता हूँ, जो मौजूदा फाइलर है वो इस स्कीम पे दो शराइत पे आ सकता है कि अगर आपके पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप इस स्कीम में आते हैं तो आपको कम अज़ कम पिछले साल जितना टैक्स अदा करना होगा, तो ये एग्जिस्टिंग रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करता है। मगर दूसरी तरफ हमारे वो 35 लाख दुकानदार हैं जो भी नेट से बाहर हैं, हमारा एस्टिमेट है 35 लाख का, ये कमर्शियल मीटर्स के डेटा के ऊपर है। और सबसे बड़ी डिस्टॉर्शन मेहताब भाई आपने जिक्र किया, तो सबसे बड़ी डिस्टॉर्शन तो ये है कि ये 35 लाख दुकानदार नेट से बाहर हैं, तो इसलिए यकीनन ये एक आउट ऑफ द बॉक्स एक हमने एक तरीकाकार निकाला है ताकि हम उनको नेट में लेकर आ सकें और एट स्केल लेकर आ सकें और वॉलंटरी बेसिस पे लेकर आ सकें। तो जो नॉन फाइलर हैं उनकी आपको खैर मैं उस तफसील में नहीं जाता कि वो किस तरीके से स्कीम में आ सकते हैं, वो उसका रकम डिक्लेयर करेंगे और टैक्स लगेगा। जो इसमें जो नहीं आता, क्योंकि ये भी एक ऑप्शनल स्कीम है, आज भी दुकानदार के पास ये दोनों रास्ते मौजूद हैं कि वो इस नई स्कीम में आए जो आसान स्कीम है, या वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाए, ये दोनों शराइत उसके पास मौजूद है। मगर अगर उसका क्या होगा जो दोनों में नहीं आता, तो इसी स्कीम के उस कागज़ के अंदर जो एक सफ़े का सादा कागज़ है उसमें एक फ़ाइन भी हमने बाकायदा दर्ज किया हुआ है कि पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 25,000 और तीसरे महीने 50,000 रुपये का फ़ाइन है, और ये भी अंजुमन ताजरान के साथियों की रजामंदी के साथ स्कीम में शामिल हुआ है। तो इसीलिए हम समझते हैं, मेरे ख्याल से एक बुनियादी मकसद क्या है कि वन वे और अनदर हर दुकानदार साथी से हम एक रकम कलेक्ट कर सकेंगे और अंजुमन ताजरान की रजामंदी से करेंगे। मेरा ये ख्याल है, मुझे जिस वजह से उम्मीद है कि इस दफ़ा कामयाबी होगी वो ये है कि जो दुकानदार हैं वो खुद इस स्कीम का उनने मुतालबा किया, एक उनकी तरफ से विलिंगनेस है कि हमारे साथ बढ़ के नए टैक्स ईयर में इसकी फाइलिंग करवाएं और टैक्स कलेक्शन करवाएं। बाकी इंशाल्लाह आगे हम इसको लेकर चलते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। जी ग्रीन प्लेट का आपको अगेन मैं सारी फीचर्स जानबूझ के नहीं रिपीट करना चाह रहा था, मगर चेयरमैन साहब ने निशानदेही की। देखिए जिस डिस्क्रेशन और ग्राउंड में जो दुकानदारों को इशू आता है, क्योंकि हमने उनसे भी सुनी कि आपको क्या इशू आता है, क्यों आप इस स्कीम में नहीं आते, तो जो ग्राउंड के मसाइल हैं लोगों को होते हैं, दुकानदारों को भी कारोबारों को भी आपके सामने, तो एक जो भी गोशवारा जमा कराएगा उसको FBR एक ग्रीन प्लेट देगी, और उसका डिज़ाइन हमने आप सबसे शेयर किया है, और उस स्कीम उस ग्रीन प्लेट का डिज़ाइन बशमूल सारा टेक्स्ट भी हमने दुकानदारों के साथ बैठ के लॉक किया, और उस ग्रीन प्लेट जो भी दुकानदार हासिल करेगा वो दुकान के बाहर लगाएगा, उस दुकान के अंदर FBR का अमला पूछगछ के लिए दाखिल नहीं हो सकता। तो देखिए देर आर अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स दुकानदारों के लिए इसमें, उनको फिर विदहोल्डिंग एजेंट भी नहीं रहना पड़ेगा, POS की मशीन से भी इस्तेमाल है, वी फील देर इज इनफ इंसेंटिव कि दे कम इनटू द स्कीम और हम इस टैक्स नेट को वाइडन करें और इनसे कलेक्शन कर सकें।
1: जी जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, दो सवाल है। सवाल ये है सर कि लास्ट ईयर आपने ये बड़ा असर्टिवली आपने क्लेम किया था कि ये जो टैरिफ रिफॉर्म प्लान्स है ये बगैर किसी प्रेशर के हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका हमें जो नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि वो मेरे ख्याल में रेजिस्ट कर रहे हैं, और आप लास्ट ईयर उनको आपने उस रेजिस्टेंस को फेस भी किया था, तो उसमें मैं सिर्फ एक का मेंशन करूंगा कि आप लोगों का प्लान क्या है ऑटो के हवाले से, क्योंकि इस साल उस प्लान के तहत जो आपने प्लान बना लास्ट ईयर बताया था कि ऑटो सेक्टर को भी इस साल इस पे हिट पड़ना था जो टैरिफ रेशनलाइजेशन में, तो उसके लिए क्योंकि कमेटी बनी है डार साहब की सरबराई में और वो सारा, तो उस पर आप थोड़ा सा हमें अपडेट करें कि वो कैसा होगा। और मेरा सेकेंड पार्ट चेयरमैन ने बिहार से या आप अगर क्वेश्चन जवाब देना चाहते हैं, सर आप बताएं कि 12.8 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन का जो ये जर्नी है, आप हमें ये बताएं कि इस बार सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपने FBR से तो पावर ले लिए, एक तो ये क्लैरिफाई करें कि बिहार का कोई सेट रहा इस साल, क्योंकि फर्स्ट ईयर था उस सेपरेशन ऑफ पॉलिसी, तो एक ये सेकंड ये बताएं सर कि ये जो जर्नी है, इतना गैप है, इस गैप को आप लोग कैसे फिल करेंगे? मतलब डिजिटलाइजेशन या प्रोविंसेस से जो आप लोग पैसे ले रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप है, तो इसको और क्योंकि आपने कोई टैक्स मेजर्स भी नहीं लिए इस बजट में और ज़्यादा रिलायंस इन्फोर्समेंट पे है, तो मेरे ख्याल में ये FBR के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो इन्फोर्समेंट को कैसे वो करेंगे बफर जोन से निकल के।
2: देखिए, आपका जो पहला सवाल है, हमने ये टैरिफ की जो पॉलिसी है इसमें कहा था कि ये मल्टी ईयर पॉलिसी है, और हमने कहा था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, ACDs, रेगुलेटरी ड्यूटीज़, और इस सफ़र के इख्तिताम तक हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमने बड़ा बोल्ड स्टेप उस वक्त लिया था कि जहाँ लोग प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम एक्चुअली लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से कहा गया था कि ख़ास तौर पे जो फोकस है कि हमारे रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनकी कीमत कम हो ताकि हमारा एक्सपोर्ट कम्पटिटिवनेस बढ़ सके। तो ये सेकेंड ईयर उस पर अप्रूव हो चुका है और वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। आपने जो जिक्र किया वो कोई ऐसी बात नहीं है जो हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कल मैंने बजट स्पीच में उसका जिक्र किया है कि ये इस वक्त जो ऑटो पॉलिसी है वो इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी है उसके ऊपर इस वक्त उनका काम जारी है, और वो आपके सामने आ जाएगा कि उसमें क्योंकि देखिए उसमें मेरे भाई इम्प्लिकेशंस आर नॉट जस्ट फॉर द टैरिफ ना, उसमें तो और भी जो टैक्सेशन है वो उसमें अगर फ़र्ज़ करें वी वांट टू मूव इन दैट डायरेक्शन, उसके तो और भी इम्पैक्ट हैं जो हमने उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द टैरिफ रिजीम, तो वो मैंने पहले जिक्र कर दिया, वो आपको पता चल जाएगा एंड ऑफ द मंथ के जब हम वाइंडिंग अप स्पीच कर रहे हैं कि उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है, देखें उस पर तो कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमने, और ये इस तरह ऐसे नहीं है, देखें ये पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, एंड देयरफॉर क्योंकि अभी भी सब लोगों ने बात की कि जी ये फ़ंड के साथ आप प्रोग्राम में हैं, ये फ़ंड कभी नहीं ये बात मानता था कि इस मुल्क में इन्फोर्समेंट हो सकती है। इस टीम ने एक्चुअली के दिखाई, इस दफ़ा हर दफ़ा यही होता था कि जी अगर आपने टैक्स टू GDP यहाँ से यहाँ लेकर जानी है आप बताइए नए मेजर्स कहाँ हैं, राइट? तो ये पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी चूंकि ये अब एक ट्रैक रिकॉर्ड बना चुके हैं, एंड नाउ विद द ऑपरेटिंग मॉडल दिस इज गोइंग टू गेट फर्दर बटरेस्ट एंड वो फर्दर उसमें इनको इनेबलमेंट मिलेगी, तो इसलिए वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट। और देखें मैं फिर वही बात करता हूँ कि ये 10,000 फीट की डिस्कशन नहीं है, मैंने अभी भी जिक्र किया कि सेल्स टैक्स में जो शुगर और सीमेंट पे हुआ है ये मैं को ऊपर से तो नहीं है, ये तो वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली इनकी महसूलात में आ चुकी हैं, दैट्स द सेकंड थिंग, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें। एंड द थर्ड थिंग इज़ येस, टैक्स पॉलिसी इज़ नाउ विद फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ विद FBR, लेकिन जहाँ भी होता है पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ मिलकर काम करना है ना, क्योंकि हम हवा में चीज़ें उड़ा दें और ये कहें कि जी ये अब इसको इन्फोर्स कैसे करना है और इसको आगे चलाना कैसे है, तो ऑफ कोर्स द टैक्स पॉलिसी वो डॉक्टर नजीब जा चुके हैं, आई थिंक वो शायद सेनेट की कमेटी में ऑलरेडी मौजूद हैं इस वक्त, बिकॉज ही हैज़ टू स्टार्ट, अभी क्लॉज बाय क्लॉज बार रेंडिशन शुरू है, तो वो है, लेकिन वो मुशावरत के साथ ही ये सारी चीज़ चलेगी। जी आप थोड़ा सा इन्फोर्समेंट पे जिक्र कर दें। हाँ,
0: ये देखिए जो टैक्स पॉलिसी का फंक्शन है ये FBR में रहने से एक नुकसान था कि वो हर दफा हम ट्वीक कर लेते, आपको पता है, लेकिन अभी ये एक सेम गवर्नमेंट ही है, एक महकमा दूसरे से गुफ्तगू कर सकता है, सेपरेशन हुई है, तलाक नहीं हुई, तो वी कैन वर्क विद ईच अदर।
3: अच्छा सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा एक तो क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही होता है कि बजट की क्लैरिफिकेशन आए बजाय इसके कि तरदीदें आए। सर पहले तो तनख्वाहों के हवाले से है कि भोसाल साहब ने कहा कि 2 एडहाक अलाउंसेस उसमें मर्ज किए गए हैं, ये क्लियर कर दीजिएगा कि एडहाक अलाउंसेस मर्ज करके नए पे स्केल जारी होंगे जो बेसिक होगी उस पे 7% लगेगा, और दूसरा ये कि इसका इतलाक ऑटोनमस बॉडीज़ कॉरपोरेशंस इस पे भी होगा, एक तो ये क्लियर कर दीजिएगा।
4: देखें, जो ऑटोनमस बॉडीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके अपने वो अलाउंसेज हैं, उनके हर एक का अपना एक पे पैकेज है, पे स्केल्स हैं, तो वो जिन्होंने गवर्नमेंट पे स्केल्स को अडॉप्ट किया हुआ है वो उसको फॉलो करेंगे, वो अपने बाकायदा उससे बोर्ड से उसकी इजाज़त लेते हैं और अप्रूवल लेते हैं, लेकिन जिनकी अपने पे स्केल्स हैं उन पे वो इसका नहीं होगा।
3: नए जो नज़रसानीशुदा बेसिक होगी उस पे होगा
4: जी,
3: नज़रसानीशुदा जो पे स्केल की बेसिक बनेगी उस पे लागू होगा,
4: ये उस पे होगा, दोनों मर्ज होंगे
3: उसके बाद। अच्छा, दूसरा सर एक क्वेश्चन है बस, वो ये कि सर आपने बहुत ठीक है, हर बंदा इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है कि आपने आगे गए हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, क्या आप इस प्लेटफॉर्म से हमें ये आप इश्योरेंस दे सकते हैं कि हम ग्रोथ का सफ़र तय करने के बाद IMF के प्रोग्राम से छुटकारा हासिल कर लेंगे और इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद किसी नए प्रोग्राम में हमें नहीं जाना पड़ेगा? और जो फेसलेस कस्टम का है ना सर, इस पर एक सर नहीं सर ये क्लैरिफिकेशन है, सर ये क्लैरिफिकेशन है, इसलिए कि ये आपका बहुत बड़ा स्टेप है, ये हमारी रेवेन्यू की डायमेंशन भी बदल सकता है और ये वो ख़राब भी कर सकता है। वो ये कि ये सर क्या जो PRA ने 2019 में ज़ैनुल आबिदीन साहब ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, ये उससे मिलता जुलता है, उससे डिफरेंट है? क्या किसी मुल्क में ऐसा कोई सक्सेस मॉडल आप बता सकते हैं जहाँ पे ये फुली इम्प्लीमेंटेड हो, उसके नतीजे सामने आए हों? ये काइंडली
2: कौन सा है? आप कर लें जी, पहले
5: मैं आखिरी आधे का जवाब दूंगा। फेसलेस जो देखे, जो हमारा कस्टम्स वाला है वो तो बहुत दुनिया में है, चाइना में है, इंडिया में है, बहुत जगहों पे है, और वो बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हमने यहाँ भी कर लिया है। कराची में आपको पता है हमारी ज्यादा ट्रेड ही वहाँ है, लेकिन अब इस वक्त किसी बंदे की कोई GDP सवाई उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा कहीं नहीं जा रही है, और वो हम जब सवा साल पहले शुरू किया था तो उसकी बड़ी वो हमें भी थे केस में, और उसमें इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं, लेकिन पर GDP रेवेन्यू हमारा बढ़ा है। उसके नतीजे में हमारे रिव्यूज की तादाद बढ़ी है, जिसका मतलब पीपल आर नॉट एग्रीइंग विद व्हाट इज बीइंग असेस्ड। यानी जो बंदे ने इंपोर्ट किया था वो कह रहा है कि मेरी अप्रेजर से इस दफा बात नहीं हुई तो अब मैं रिव्यू करूंगा, तो रिव्यू 5 गुना बढ़े हैं, तो वो तो बड़ा इस लिहाज से कामयाब गया है। अब जिस बात की आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मुल्कों ने इसमें काम किया है। हमारे एक नेबरिंग कंट्री ने कोई 5-6 साल पहले शुरू किया था, जो हम फेसलेस IR वाली साइड पे लेके आ रहे हैं, और उन्होंने कुछ उसमें सीखा भी, कुछ गलतियां भी कुछ सीखा। तो अच्छी बात यह है कि हमें वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। क्या चीज, ये शुरू इंडिविजुअल से होगा, एवेंचुअली कंपनीज में जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत एंड में आएंगे इसके अंदर। ये इट वुड स्टार्ट विद, देखिए हमारा जो 80-85% मसला है ना, वो है कि इंडिविजुअल्स को बहुत तंग किया जा रहा है। ये ना कलूजन को और हैरेसमेंट को रोकने का मॉडल है, ये टैक्स बढ़ाने का मॉडल है, सच नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे, वो इसका साइड इफेक्ट होगा, इसका कंसीक्वेंस होगा। तो हमने पहले देखे क्या अच्छे अफसरों को LTUs में लगाया, अब जब सारे अच्छे निकाल के LTUs में लगा लिए तो पीछे जो रह गया उसकी एवरेज गिर गई, उन्होंने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तो वी वॉन्टेड कि ये जो महकमे का, अच्छा ये बहुत सारे चंद लोग हैं जो वो खराबी करते, पूरा महकमा बदनाम होता है। तो मुझे अफसरों ने खुद आके कहा, सर इस बदनामी से हमें बचना है, अब हम सारे अच्छे अफसरों को लगा रहे हैं, AB को लगा रहे हैं और लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, इसलिए भी किया हुआ है, तो ये बीच में जो चंद लोग हैं उनकी वजह से, क्योंकि वी आर जज्ड बाय आवर फर्स्ट, तो उसका हल यही है कि हम उसे मॉडल ही बदले। तो नया ऑपरेटिंग मॉडल इसके नतीजे में आए, आपको मेरा ख्याल टेक्निकल ब्रीफिंग में उन्होंने थोड़ा सा इस पे डिटेल में बताया होगा।
4: राइट जी, ये आप जरा जवाब दीजिए इसका एक
0: जी जी वो जरा
4: जो ग्रोथ वाला और वो
0: लार्जर सवाल है। देखिए जी, माजी में ये हमारा कता नजर के कौन सी हुकूमत थी कि आपके बूम एंड बस्ट साइकिल्स रहे, आप एक IMF प्रोग्राम में जाते हैं, आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, मईशत एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे चढ़ना शुरू होती है, आपके ज़र में बादला के ज़खायर बढ़ने के बजाय कम होने शुरू होते हैं और आपको इवेंचुअली ब्रेक्स लगाना पड़ती हैं। चूंकि अक्सर माजी में जिस हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ की आप बात करें, बशमूल जो आपने पिछली हुकूमत का जिक्र किया, वो कंसम्पशन लेट ग्रोथ थी, वो अक्सर वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं वो सबसे आसान काम है, वो तो आज भी कर सकते हैं, आप आज लिक्विडिटी पंप इन कर दें और आप इस चीज़ की आप फिक्र करना छोड़ दें कि आपके ज़र्रे मुबादला के ज़खायर कहाँ पर जाएंगे, तो वो ग्रोथ आपको मिल जाएगी, मगर वो साल की होगी, डेढ़ की होगी, और फिर आप वापस उसी पे होंगे
4: या उससे भी कम की होगी।
0: तो इस दफ़ा बुनियादी फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमने पहले 2 साल में सिर्फ स्टेबलाइजेशन पर फोकस नहीं किया, फंडामेंटल रिफॉर्म्स का जिक्र किया। ये FBR की जो सारी चीज़ें आपके सामने हम जिक्र कर रहे हैं, हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की तो PIA की निचकारी करके दिखाई, कितनी हुकूमतों ने कोशिश की, नहीं हो सकी। फर्स्ट वुमेन बैंक की निचकारी हुई, इस साल हमारा इरादा है कि 3 आपको बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निचकारी होती नजर आएगी। एक्सपोर्ट्स पे स्पेसिफिकली अब आप देखें ना, इस साल का जो बजट है उसका फोकस इसी पे है कि क्योंकि आगे हमारे इस मसले का मुस्तकिल हल है ही एक्सपोर्ट्स, जब तक हमारी मईशत में ज़र्रे मुबादला के ज़खायर कमाने की ताकत नहीं बनेगी तो ग्रोथ के साथ हम फंड प्रोग्राम से बचना मुश्किल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे ऐसी ग्रोथ आए जिसमें ज़र्रे मुबादला के ज़खायर साथ साथ बढ़ें कम होने के बजाय, और उसके लिए उसका वाहिद आंसर जो है वो एक्सपोर्ट्स है। इस बजट के अंदर आपने देखा है कि जो एक्सपोर्ट्स के मेजर्स हैं वो आपके सामने, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल में, आपको एक और मिसाल देता हूँ, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइवेट सेक्टर का मेजॉरिटी वोट किया और उसका जो एक 0.25% लगता था एक्सपोर्टर्स के प्रोसीड्स पे वो भी इलिमिनेट किया। तो इसीलिए हमारा सारा फोकस इस पर है कि एक तरफ तनख्वाहदार तबके पे बोझ कम किया, दूसरा सनत और एक्सपोर्ट को इसीलिए स्पेसिफिकली फोकस किया ताकि हम आगे सस्टेनेबली एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके।
6: थोड़ा सा ना ब्रीफ रखें, देखें मेरी गुजारिश है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम खत्म हुए भी आधा घंटा गुजर गया है और आगे स्टैंडिंग कमेटी छोड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए मैं मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम एक सवाल यहां से ले लेंगे फ्रंट से, एक उधर से ले लेते हैं। सर मेरी सिर्फ गुजारिश ये है सर, ये रिक्वायरमेंट है लॉ की, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कशन शुरू हो गई है, फाइनेंस टीम पूरी यहां बैठी हुई है, अब हम ओवरड्राइव में चले गए हुए हैं। आप देखिए जो सवाल होने थे मैक्सिमम हो गए हुए हैं।
7: देखिए मैं सिर्फ एक मेरी गुजारिश है,
6: थोड़ा सा रीजनेबल हो,
7: जो पहले सवाल हो चुके हैं
6: रिपीट ना करें, बिकॉज़ अपना साइकिल शुरू हो गया है,
7: वो रिपीट
6: ना करें, हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं, वी आर रनिंग अराउंड इन साइकिल। जी आप करें फिर इधर आ जाते हैं, इधर आए जी आप, उनका मिला के प्लीज शुरू करें प्लीज।
8: तारू साहब आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं सिर्फ अपना
6: सर सवाल पे आ जाएं सर प्लीज, तमहीद नहीं सवाल पे, सवाल है क्या?
8: नेशनल बैंक के पेंशनर के हवाले से, और वो आज इस बात को कितने साल हो गए, मतलब हसनी साहब जो हैं वो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उनको मतलब है कि कोर्ट की तरफ से नोटिस भी हुआ है। आप ये देखें कि 9000 पेंशनर हैं, 3000 बेवा हैं, आप खुदा का मतलब ये तो इसलिए मतलब कल को हमने भी मर जाना है, तो इसलिए आप मतलब इनको
6: सर इस साइड से भी एक सवाल ले लें और फिर इकट्ठा जवाब दें प्लीज।
9: सर ये बताइएगा मिनिस्टर साहब, आपसे ये सवाल है कि जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्जे हैं उसको कम करने के लिए आपकी तवील मुद्दती जो हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि जो गैर मुल्की कर्जे उसका एक बहुत बड़ा बर्डन है, और दूसरा ये है कि आम एक इम्प्रेशन है कि जो बजट प्रपोजल तैयार की गई है वो सारी IMF की डिक्टेशन जो उसकी शरायत के मुताबिक की गई, और दूसरा ये कि क्या वाकई IMF को पाकिस्तान आने वाले सालों में खुदा हाफिज कह देगा?
7: अब देखिए ना, मैंने दरख्वास्त ये की थी कि सवालों को रिपीट ना करें, बिकॉज आप सब लोगों का जो है वक्त बहुत कीमती है।
10: क्वेश्चन ये है कि हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफी कट कर दिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए हमने 1 trillion रुपीज़ की, जबकि करंट एक्सपेंडिचर्स 17.4 trillion पे हैं। तो जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो लोगों को कैसे रोज़गार मिलेगा, जॉब क्रिएशन कैसे होगी? और मुझे ये बता दें कि आपने जो राइट साइजिंग और ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं उसके ज़रिए कितने अपने एक्सपेंडिचर्स कट करने का प्लान तैयार किया है? और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सिविल पेंशनर्स
6: एक पे गुजारा कर ले, बहुत
10: सिविल पेंशनर्स के लिए
6: हम कर्सी में बैठे हुए हैं आपकी खातिर, प्लीज रिपीटेशन बहुत है।
10: छोटा सवाल है,
6: एक सवाल हो गया, प्लीज किसी और को मौका दें।
11: सर ये बताएं, आपने PIA के लिए, सर आपने जो प्राइवेट PIA है उसके अपना इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट की इंपोर्ट के लिए आपने टैक्स एग्जम्पशन दिए हैं, ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी उसके लिए क्यों नहीं किया? और मुझे तो ये लगता है कि ये जो प्राइवेट पोस्ट प्राइवेटाइजेशन ये अपना उसको मिसचीफ है उस प्राइवेट सेक्टर के फेवर में, नंबर एक। दूसरा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तारण साहब हमें आज ग्रोथ मॉडल पढ़ा रहे हैं, इन्हीं की गवर्नमेंट पिछले 2 साल छोड़कर उससे पहले पढ़ा रही थी कि ये एक्सपोर्ट फाइनेंस के जो पैसे हैं पिछली को जो गवर्नमेंट ने किए थे वो मिसयूज हुए और लोगों ने डाइवर्सिफाई किया टुवर्ड्स अदर सेक्टर्स और रियल एस्टेट में। तो
7: मैं आपका पहली देखिए, हर चीज़ के ना आप पहले बात ये होती थी कि प्राइवेटाइजेशन हो नहीं रही, तो आप सीरियस भी हैं प्राइवेटाइजेशन के,
2: अब आप कहती हैं पी आई ए, अब इंशाल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने जा रहे हैं, तो ये तो एक पार्ट ऑफ द सेल एंड परचेज एग्रीमेंट की डिस्कशन होती है इंशाल्लाह। जैसे अभी जिक्र किया गया तीन डिस्को, नहीं देखें जो भी है ये कैबिनेट से अप्रूव करके, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, अगर बजट में पेश किया है
4: उसका ओरिजिनल, दिस वाज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर।
2: और दूसरा जो है आपकी बात, एक मिनट जी, मैं ताकि कियानी साहब का दूसरा भी सवाल का जवाब दे दूं। देखें वो जो बात होती है वो डिस्कशन होती है इन टर्म्स ऑफ द टर्फ, ये टर्फ नहीं है, ये दिस इज एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, जो इस वक्त स्टेट बैंक से अब सारा मूव हो रहा है टू पाकिस्तान एग्जिम बैंक, उसकी जो एक लिमिट आ गई थी उस लिमिट को एक्चुअली बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए एडिशनल सब्सिडी दी जा रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को ये 4.5% पे अमाउंट ज़्यादा मकदार में मिल सके, तो इट्स पार्ट ऑफ देयर रेगुलर पार्ट।
12: आपकी मेजर जो मेन कमेटी है वो कब आप कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनएससी में प्राइम मिनिस्टर ने सीएमकेपी को ये बात की है कि जो मर्ज्ड एरिया का शेयर्स है अगर वो हम एनएफसी के थ्रू ना कर सके तो उसके लिए ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे, और आपका जो एनएफसी का अब जो टेक्निकल इशू रिजॉल्व हुआ है वो थ्रू 3 years के लिए है, आप पॉलिटिकल विल क्या है, कब तक एनएफसी का जो कमिंग फिस्कल ईयर है आप इसमें रिजॉल्व कर रहे हैं या नहीं। सेकंड, अगर इफ़ यू अलाउ मी एक छोटा सी क्वेश्चन है, जो बजट है ये पॉलिसी पेपर है, आई थिंक जो पॉलिसी पेपर और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है इसमें कॉन्ट्राडिक्ट्री है, कैसे कि हमारा जो एफबीआर का टारगेट है वो अनरियलिस्टिक है, हमारी जो कलेक्शन है सर शॉर्ट है प्लीज समझ लीजिए,
2: ये पहले सवाल हो चुके हैं ना मेरे,
12: चले ठीक है सर फर्स्ट आप
2: देखें ये हो चुका है, उसका हम जवाब भी दे चुके हैं कि ये नहीं, लेकिन वो पहला वाला जो आपका सवाल है, पहला आपका सवाल जो है मैं दोबारा उसका जिक्र कर देता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है वो तो हमने पूरी करनी है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो अरेंजमेंट हुई है दिस इज आउटसाइड द एनएफसी। तीसरी चीज़ ये है कि एनएफसी को ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस हम इंशाल्लाह बिल्कुल आगे लेकर चलेंगे।
6: सर अब लास्ट टू क्वेश्चन लेंगे, सर लास्ट टू क्वेश्चन लेंगे प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे देखें प्लीज थोड़ा सा सैफ और ईमान साहब से कर लेते हैं, आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें, वो पीछे जो बैठे हैं साहब या आप।
13: जी जी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बताएं कि क्या मौजूदा दौर में जो पेंशन है उसका मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए या नहीं।
2: देखिए पेंशन की जो रिफॉर्म है मेरे भाई, आपको हम उस पर पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि उसमें पैरामेट्रिक रिफॉर्म्स भी हुई हैं और पिछले साल वी हैव मूव्ड ऑन टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। भाई मिनिमम के उसमें कई पैरामेट्रिक रिफॉर्म्स हैं लेकिन हम इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे ले जा चुके हैं, और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में जो नए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किए हैं 24,000, नाउ दे आर ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, और इसको हम जो ये जो है इस पर अब आपने कंपनी भी बना ली है, इसको हम एक बड़ा एक प्रोफेशनल एसेट मैनेजर लेकर आएंगे ताकि लोगों के पास ये चॉइस हो कि उन्होंने एक्विटीज़ में डालना है, फिक्स इनकम में डालना है, जिस तरह जो फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं उस तरह हम इसको इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे। जी
14: जी, इस बार आपने बहुत ज़बरदस्त एक और भी काम किया है कि 476 बिलियन के आपने ग्रीन कंपोनेंट्स शामिल किए हैं सब्सिडीज़ में, ये थोड़ा सा बताएं कि आप अगले साल में क्या करना चाह रहे हैं, और दूसरा ये कि हम आबादी के ऊपर बात करते रहेंगे, आप ज़रा ये जो कम से कम उजरत है इसको इम्प्लीमेंट करा के आप भी तारीख में अमर हो जाएं या कोई भी तारीख में अमर हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। ओकाड़ा में एक मिल है आपके एमएनए की, वहाँ पे 25,000 की तनख्वाह है, 6 महीने के बाद एक स्पेस आती है, 500 लोग सिफारिश करा के बैठे हो रहे हैं।
15: सर मैं सर पूछना चाह रहा हूँ कि गैस का सर्कुलर डेट जो है वो इस वक्त बहुत हाई है। जी सर, सर गैस के सर्कुलर डेट पे पूछना चाह रहा हूँ, आप ये इस वक्त बहुत हाई है और आपने एक आईएमएफ के साथ एक प्लान जो था वो डिस्कस किया है, तो उस पर उनका क्या मौक़िफ है, क्योंकि जो इतलात हैं कि वो माने नहीं है इसके ऊपर, उन्होंने कहा इसको रिव्यू करें, तो इस पर ज़रा आप बताइए सर इस वक्त क्या पोजीशन।
2: कौन से वाले जी?
15: जी गैस सर्कुलर डेट, गैस
16: गैस के सर्कुलर डेट की बात
2: नहीं, देखें जिस तरह वो तो देखें दीज आर ऑन गोइंग डिस्कशन, जिस तरह पावर का सर्कुलर डेट पे उनके साथ बातचीत हुई, जिस तरह वो रिड्यूस हो रहा है, इसी तरह डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनसे कि इसको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। ये ऑनगोइंग डिस्कशन है ना अभी उसमें, और जब है इसमें जो आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज एन ऑनगोइंग डिस्कशन एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन।
17: आवाम दोस्त बजट पेश करने पे आपको मुबारकबाद।
18: सर मेरा सवाल ये है कि
17: मैं बजट जो है इसमें अगर देखा जाए भारत के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन हम दूसरी तरफ दे रहे हैं कि हमारी जो सनत है, जो डिफेंस सनत है, उसके हवाले से कोई टारगेट नहीं कि इतना अचीव करना ताकि रेवेन्यू बढ़ सके।
2: नहीं देखें, ये तो हमने बड़ा डिटेल में आपको बताया है कि इंडस्ट्री का अगले साल क्या टारगेट है, LSM का कितना टारगेट है, और दोनों चीज़ों को हम साथ लेकर जा रहे थे।
6: लास्ट क्वेश्चन।
18: जी जी, वफाक और सूबों के दरमियान, वफाक और सूबों के दरमियान बजट के हवाले से बहुत सारे इश्यूज तय हुए, उसमें नेशनल बजट आउटले है और स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें तय हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि NFC के जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है।
2: मैं सर पहली दफ़ा कई दफ़ा NSV बात कर चुका हूं, इसको हमने स्ट्रक्चरली आगे लेकर जाना है। इस वक्त की जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट से बाहर है, और हमने उसके वर्टिकल इंडस्ट्रीज भी, हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रीज भी इंशाल्लाह देखेंगे, और ये सूबों की मुशावरत से होगा। बहुत शुक्रिया जी।
19: वफाकी वज़ीरे मोहम्मद औरंगज़ेब अताउल्लाह तार और वज़ीरे मुमलकत बिलाल अज़हर कियानी और हुकूमती मौशी टीम की पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग आपने मुलाहिज़ा की। उन्होंने कहा कि रवां साल मौशी लिहाज से नमायां पेशरफ्त हुई है, हमने बार बार बरामदात पर मबनी ग्रोथ की बात की है।
20: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Kilani. First, the headlines. Prime Minister has reaffirmed government's commitment to taking all possible measures for progress and development of all four provinces. Finance Minister, addressing post-budget news conference in Islamabad today, said comprehensive measures have been taken to create an enabling environment for export-led growth. Deputy Prime Minister and Swiss Foreign Minister in a telephonic conversation have welcomed progress towards understanding between the United States and Iran. In ICC Women T20 World Cup, Pakistan will face India in Birmingham tomorrow.
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है. इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है. बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें. आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं. तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं. मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम. सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए. तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें. याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है. कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार. बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार.
1: 101 FM.
5: किसी भी किस्म की ज्यादती, जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें. यह पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया.
1: This is FM 101.
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा.

0: आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, प्रोग्राम जान है ते जहान है दे नाल ताहिरा जबीन हाजिर है। अज साडे प्रोग्राम दे विच साडे मेहमान ने होमियो डॉक्टर सईद अनवर सुलहरी साहब। डॉक्टर साहब किसी तारफ दे मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब साबका वाइस प्रिंसिपल ने लाहौर मेडिकल कॉलेज दे। डॉक्टर साहब इस शोबे दे विच 30 साल तजर्बा रखते ने। सामईन तुहानू कोई भी मसला होवे तुसी क्लीनिक आ सकते हो या डाक दे जरिए दवाई मंगवा सकते हो। इस तों इलावा डॉक्टर साहब नज़र दे बारे च होर भी काफ़ी बीमारियां दे बारे च चैकअप करते हैं और अक्सर अपने क्लीनिक ते कैंप भी लगाते हैं। डॉक्टर साहब दा क्लीनिक दा पता नोट कर लवो, अनवर हस्पताल नज़द थाना बदामी बाग लाहौर। डॉक्टर साहब दा फोन नंबर है 0300441380, यानी 0300441380। डॉक्टर साहब के क्लीनिक के औकातकार नोट कर लवो, सुबह 11 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक, तो रात 8 बजे तो लैके 11 बजे तक अपने क्लीनिक ते मरीज वेखते ने। तो प्रोग्राम का बकायदा आगाज करने हैं, साढ़े नाल मौजूद ने होमियो डॉक्टर सईद अनवर सुलहरी साहब जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी। डॉक्टर साहब पहला मैसेज मैं पढ़ रही हाँ, रेहाना बीबी ने किया है सानू लाहौर तो ही। लिख दिया ने कि मैं तुहाड़े कोलों दवाई खाधी है। डॉक्टर साहब इन्हां नूं दमे दा मसला सी, इह कहिंदियां ने कि मेरा दमा हुण ठीक है
2: जी।
1: पहले इन्हां दा अक्सर साह भी खराब हो जांदा सी, घर दा काम करन लग्गिआं भी इन्हां नूं तकलीफ हुंदी सी। लिखदियां ने कि मैं हुण ठीक हाँ। इन्हां ने मजीद कहा कि डॉक्टर साहब मैनूं इहदे बारे च परहेज़ दे बारे दसो, और इस तों इलावा अगर मैनूं दवाई की जरूरत है तो दवाई मजीद भेज दिओ।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्हों का ना दमे का मसला काफ़ी ख़राब से, बड़ा पुराना मरज़ से जिंद वजह इन्हों का सह रुक जाता सी। इन्हों का एक्सरे भी मैं चैक किया, इन्हों का ना बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा सी, रेशा जमे सी बलगम तो फेफड़िया के बच्चे, तो वो अल्लाह तला के फजल ना साड़िया दवाइया ना शफायाब हो गए हैं। तो थोड़ी दवाई से जी आर सैनिक ती, ये 5 कतरे सुबह दोपहर शाम पीने से, ये ना थोड़ा दमे का मरज़ खत्म हो गया है हूँ। लेकिन मजीद तुसी दवाई 1 महीने की होर खानी है। ये दवाई तुसी क्लीनिक ते तशरीफ लाओ या फिर डाक दे जरिए मंगा लो, अल्लाह ताला अपना करम करेगा
1: जी। डॉक्टर साहब है अगला मैसेज मैं पढ़ रही हाँ, अहमद साहब ने हाफजाबाद तो लिखा है। लिखते हैं कि मैं मोहरिया का मसला
2: जी,
1: इन्हों डॉक्टर ने ऑपरेशन के बारे कहा सी, लेकिन ऑपरेशन तो करवाने तो डरते सी। इन्हों ने तुहाडे कोलों दवाई खाधी है। लिखते हैं कि मेरी सज्जी लत भी सुन्न हुंदी सी, इस तों इलावा कमर च भी दर्द रहिंदी सी। इन्हें लिखे कि मैं 1 महीना तुहाडे कोलों दवाई खाधी है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हूँ ठीक हाँ। इन्हों ने कहा कि मजीद डॉक्टर साहब जो मेरा मसला है कि लत का और कमर का, ये वास्ते मन मजीद दवाई अरसाल कर दौ।
2: हाँ जी, मोहरिया का मसला हो कोई भी मसला हो, जोड़ा दियाँ दर्दा ने, हड्डियाँ कमजोर हो गई ने, गोडिया तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता, इस तो बाद मोहरिया की वजह नाल भी बाद ऑपरेशन भी कराने पै जाता है। तो यदा बड़ा अच्छा तो मौसर इलाज मौजूद है। मोहरिया की दवाई असं तो डाक के जरिए भेज रहे हैं, पहले जी दूसरी दवाई खाधी उन्होंने तो काफ़ी फर्क पै गया है, लेकिन मजीद तुम यह दवाई अजय 2 महीने और खानी है। दवाई तो असं डाक के जरिए अरसाल कर रहे हैं, ये तुसी इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह इहदे नाल पूरा तुहानू आराम आ जाएगा
1: जी। सामईन साढ़े नाल मौजूद ने होमियो डॉक्टर सईद अनवर सुलहरी साहब। डॉक्टर साहब का फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लवो, 0300441380, यानी 0300441380 जी। डॉक्टर सईद अनवर सुलहरी साहब अगला सन मैसेज किया है वासा साहब ने, लिखते ने कि मेरे सज्जे गुरदे दे विच पत्थरी सी, इन्हां तुहाडे कोलों दवाई क्लीनिक तो आके लई सी। इह कहिंदे ने कि मैं 2 महीने तुहाडी दवाई इस्तेमाल कीती है, मेरे गुरदे की पत्थरी निकल गई है। इस तों इलावा इन्हां नूं हुण शूगर का मसला हो गया है। इह लिखदे ने कि मैनूं शूगर वास्ते तुसीं दवाई अरसाल कर दिओ।
2: हाँ जी, गुरदे च पत्थरी जिहड़ी उहदा बड़ा डॉक्टर ने तुहानूं ऑपरेशन का कहा सी, तुहाडे 4 mm की पत्थरी सी, तो अल्लाह ताला ने तुहानूं शफा दित्ती है, साडियां दवाइयां दे नाल शूगर पत्थरी तुहाडी खत्म हो गई है। तुहाडी दवाई सी जी लाइकोपोडियम ती, 5 कतरे सुबह दोपहर शाम तुसी पीने सन, तो ये शफायाब होए अल्लाह ताला दे फजल नाल। हुण दूसरा मसला जिहड़ा तुसी कह रहे, इहदा भी तुहानूं दवाई इंशाल्लाह इहदे नाल भी तुहानूं आराम आ जाएगा। दवाई तुहानूं इहदी असीं भेज रहे हाँ, ये तुसी 1 महीना इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह इहदे नाल अल्लाह ताला

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: देखे तो जो इधर

सुनते रहिए FM 101 101।

0: सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Prime Minister says Pakistan is preparing for electronic signing of peace deal between the United States and Iran. Deputy Prime Minister and Swiss Foreign Minister in a telephonic conversation have discussed regional developments. Finance Minister addressing post-budget news conference in Islamabad today said comprehensive measures have been taken to create enabling environment for export-led growth. Information Minister says budget for next financial year is all-inclusive and relief-oriented. Indian Forces massive crackdown and search operation entered 22nd consecutive day today in Rajouri district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir.
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें आप अपनी शिकायत गुमशुदा मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं मफादे आमा का यह पैगाम وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: One FM

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: शुक्रिया आपने
1: एफएम 101 ट्यून किया। 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सुनते रहिए एफएम 101।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सुनते रहिए FM 101.1।
4: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा गण कैन किणा गण किगरा किड़ किड़ किड़ किड़।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 7 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमरान नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करना और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आज इस्लामाबाद में बादस बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए जामे इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि आइंदा माली साल का बजट जामे और रिलीफ इक़दामात पर मबनी है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में कल बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।
2: This is FM 101.
3: Hey, we'll be back after this

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: 13 जून

0: अब नहीं। 13 जून, अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में

0: moving. Hot Wired Radio. Dave's best music. Q101. Electric.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.
3: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
4: सुनते रहिए FM 101.
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: मोहब्बत अजनबी जज्बा नहीं कोई जिसे तुम ना समझ।
1: सुनिए पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आम आदमी के लिए रिलीफ और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आज इस्लामाबाद में बादस बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी बजट मुल्क को इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी है। और ख़वातीन के आईसीसी टी20 आर्मी कप में पाकिस्तान कल बर्मिंघम में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा।
2: This is FM
3: 101. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

Plus one in the 100% power of radio. 101 FM, the voice of your choice. FM 101.

0: always ahead. FM 101.
1: This is FM 101.
0: Always ahead. FM 101.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जिगर गज़नफर महमूद क्यानी प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक नया दिन, एक नई तारीख। आज दोस्तों 12:06 हो चुके हैं। आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मेरी बात सुनी जा रही है, तमाम दोस्तों को कहेंगे जी खुशामदीद। आज 14 जून हो चुकी है दोस्तों, और आप जानते हैं कि पिछले वीक जब मैंने प्रोग्राम किया था, आज से कुछ ऑलमोस्ट 14 दिन पहले, आपको मैंने कहा था कि कुछ हफ्तों के लिए छुट्टियों पे जा रहा हूँ 1-1 से, और इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स के भी वो नहीं करने थे, लेकिन किसी वजह से वापस आना हुआ और इंशाल्लाह वापस ज्वाइन किया 1-1। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, काफ़ी ज़्यादा मैंने तो आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप भी अपने हवाले से ज़रूर बताइएगा। इस वीक के आगाज़ से मंडे ट्यूसडे वेंसडे मौसम जो है वो पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्म रहा। आज और कल, मतलब अगर जुमे की बात की जाए, जुमे की शाम से ऑनवर्ड जो है मौसम कुछ बेहतर हुआ। लाहौर के कुछ इलाकों में हमने सुना है कि बारिश हुई है, अदरवाइज इस्लामाबाद रावलपिंडी में आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन जो है वो मौसम कुछ हद तक बेहतर था। आप जानते हैं कि ये जो जून और जुलाई का महीना होता है, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें गर्मी रहती है, लेकिन हमने हमेशा, हम चूँकि इस्लामाबाद में पले बढ़े हैं, यहाँ पे हमने हमेशा देखा है कि अगर 2-3 दिन गर्मी रहती है तो उसके फ़ौरन बाद बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, लेकिन ये चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं, तो ये दूसरा तीसरा ऐसा साल है कि सख्त गर्मी पड़ती है, लेकिन उसके बाद बारिश का फिलहाल कोई चांस नहीं है। दोस्तों मौसम के हवाले से भी अपडेट करेंगे, आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, उस पर बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ पे हैं, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको अपडेट फराहम करूंगा। मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद क्यानी, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह एक मस्बत पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का ख्याल रखें, चूँकि आज हम जो हैं जहाँ हैं सिर्फ इस प्यारे वतन पाकिस्तान की वजह से हैं। एक ज़बरदस्त सा मिली नगमा डेडिकेट करेंगे प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान के तमाम फोर्सेज के नाम। क्या चीज़ महंगी हुई, क्या चीज़ सस्ती हुई, बजट पेश कर दिया गया है, इस पे भी कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अब मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा।

radio.gov.pk को एक्सेस करके आप पाकिस्तान में कहीं पर भी मौजूद हैं या दुनिया में कहीं पर मौजूद हैं, आप हमें सुन सकते हैं। आपकी शाइनिंग फ्रिक्वेंसी होगी FM 101। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल पेज है, और इलेक्ट्रॉनिक कबूतर हमारा 4471 आपकी मोहब्बत भरे पैगाम हम तक पहुंचाएगा। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज ऑप्शन में आपने जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम, शहर का नाम और खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 44-71 पर। आप जानते हैं कि इस रात हफ्ते और इतवार की जो दरमियानी शब होती है, हम एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आते हैं जिस पर आपके दिल की बात होती है, आपके दिल की बात सुनते हैं और ओवरऑल जो भी रिसेंटली दुनिया में चीज़ें चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे या इसके अलावा, उस पे हम बातचीत करते हैं। और आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 12:30 तक बैक टू बैक आपको ज़बरदस्त सब म्यूज़िक सुनवाएंगे। म्यूज़िक के बाद इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा उस पर भी गपशप करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आज भी आप लोगों ने नए कॉलर्स को लाजमी मौका देना है ताकि नए दोस्त हमें ज्वाइन करें। काफ़ी पिछले जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम में 4 से 5 लोग जो हैं वो वेरी फर्स्ट टाइम कॉल करके जो है वो बात करते, तो बड़ा अच्छा लगता था। और मैं अपने जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी बात मानते हैं। वो 1 बजे के बाद या 1:15 के बाद वो कॉल करते हैं, उससे पहला जो टाइम है वो हम न्यू लिसनर्स के लिए रखते हैं। और कई दफ़ा इस तरह हुआ कि लिसनर्स कहते हैं कि हम इसलिए कॉल नहीं मिलाते कि कॉल मिलती नहीं है, और आपके प्रोग्राम्स में जो रेगुलर लोग कॉल करते हैं उनकी कॉल बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस वजह से दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जी कॉल जो है, जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आपने 1 बजे के बाद ट्राई करना है। उससे पहले 12:30 से लेकर 1 बजे तक का जो वक्त होगा हम अपने नए लोगों को मौका देंगे और उस पर बातचीत करेंगे। फुटबॉल का जो पॉइंट टेबल है दोस्तों, वो भी आपसे कुछ ही देर बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज़ सुने तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइव कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने से मुंसलिक अफराद का ख्याल रखें। और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ज़िशान नासिर आज प्रोग्राम नहीं कर सके, और आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आए। आज भी आपको मैं बता दूं कि मुझे इस हवाले से कोई रीज़न नहीं पता कि उन्होंने क्यों छुट्टी की है। हालांकि मेरी उनसे कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और इसके अलावा आज इत्तेफाकन मुलाकात हुई आरजे राय अशरफ साहब से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे सीनियर आरजे हैं वो, और कुछ दिन मतलब काफ़ी टाइम से वो 1-1 से वो जो है वो छुट्टियों पर मौजूद हैं। आज भी उनसे जब गपशप हुई तो वो सलाम दे रहे थे आप सबको जितने भी उनके लिसनर हैं, और वो कह रहे थे वो काफ़ी जल्दी जो है 1-1 को ज्वाइन करेंगे। 12:17 प्रोग्राम में आवाज़ शामिल करेंगे इब्रारुल हक की, ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है और इसको आप सुने लौट के वापस आएंगे। शादियों का सीज़न इस वक्त जी हर तरफ चल रहा है, चूँकि आप जानते हैं कि लोगों की कोशिश होती है कि बड़ी ईद के फ़ौरन बाद और मुहर्रम से पहले जो है वो शादियों का सीज़न जो है वो काफ़ी उरूज पर रहता है। इस पर भी गपशप करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि लोग जो है वो बाकी दुनिया में जब शादियां होती हैं तो एंजॉय करते हैं, हमारे यहाँ जब भी कोई शादी या किसी का निकाह होता है तो ये नाराज़ है, फूफो नाराज़ है, चाचू नाराज़ है, उनको मनाने वाला सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त 12:18 हुआ चाहते हैं, आपका मेरा साथ रहेगा 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। इब्राहिमुल्लाह के स्ट्रैक को एंजॉय करें, वापस आएंगे, आपके पैगाम का सिलसिला हम तक पहुँचना शुरू हो चुका है, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फेसबुक पर जो पोस्ट मौजूद है दोस्तों, उसको लाजमी दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर भी हम गपशप करेंगे। स्टे विद अस।

0: اوکے جی ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں تمام دوستوں کو. معذرت جی, کچھ ٹیکنیکل چیزیں چل رہی تھی, چینجز ہو رہی تھی کافی زیادہ, وہ اب مکمل ہوئی. وسیم بھٹی جی ون ون کی آئی ٹی ٹیم کا بہت امپورٹنٹ حصہ, آج نائٹ میں وہ آئے اور انہوں نے کچھ چیزیں چینج کرنی تھی جس وجہ سے بیک ٹو بیک آپ نے میوزک سنا. اب میں واپس آ چکا ہوں. دوستو ٹاپک یہ ہے کہ سب سے بڑا زندگی میں آپ کا ڈر کیا ہے, بگیسٹ فیئر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا زندگی میں جو ہے وہ سب سے بڑا ڈر لگتا ہے. بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی چیزوں سے نا ہم ڈرتے رہتے ہیں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو آج ایک چیز آپ نے مجھے بتانی ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جسے آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈرتے ہیں. 4471 پہ مجھے دوستوں کچھ میسیجز موصول ہوئے ہیں, ان کا ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ارسلان راجپوت سرگودا سے ہیں, اس وقت آپ شیخوپورہ سے سن رہے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ, پروگرام سنتے ہیں. ذیشان آصف بھائی کو اور ضیاء انجم بھائی کو آپ نے سلام دیا. بہاؤدین فارم لاہور سے سلام سب کو, بہت شکریہ میرے دوست آپ نے میسج کیا. آئی ایم دا ون, آپ نے ہمیں مس کیا. جی اپنا نام ضرور بتا دیں تاکہ مجھے پتا چلے. ارسلان راجپوت شیخوپورہ سے ہیں. وعلیکم السلام سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ دوستوں, جن دوستوں نے 4471 پہ میسج کیا. پلیز اپنا نام لازمی لکھا کریں اور بتایا کریں کہ آپ نے ہمیں مس کیا یا نہیں. ویسے اوور آل یہ بشک مت بتائیں, لیکن ٹاپک جو ہم نے رکھا ہے اس پہ ضرور بات کیجیے گا کہ سب سے بڑا ڈر آپ کا زندگی میں کیا ہے. ایس ایم ایس کے لیے 4471, ادروائز facebook.com/fm101 چینل پاکستان جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے, جو آفیشیل پیج ہے اس پہ آپ کریں گے. کالز ہم تھوڑی دیر تک شامل کریں گے. 0511111001. سلام بھائی کیسے ہیں, فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہی ہوں, شو اچھا ہے. سلما فرام پشاور, تھینک یو سو مچ سلما, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا. اس کے علاوہ ہم فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں کون دوست کہاں سے ہمیں آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے. اس پوسٹ کو دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چل سکے اور اس پروگرام میں ہم فیڈ بیک دے سکیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں, facebook.com/fm101 چینل پاکستان پر. عظمیٰ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سوہان سے, بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ سمرا مغل, تھینک یو سو مچ آپ کے فیڈ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہے سر جی. بڑا طویل تھا وہ وقت جو آج اچانک سٹیٹس دیکھ کر یوں لگا جیسے ریڈیو پاکستان پر کوئی رنگ واپس آیا. امید ہے بہت اچھے دن گزرے ہوں گے تمام تر رنگوں اور کشمیر کے کچھ پیاری جھلکیوں سے مفید ہوئے ہیں. اور ڈر سب سے بڑا, آپ نے فلنگ دا بلینکس ڈھیر ساری ڈالی ہیں جو کہ اگر حاصل نہ ہوا تو پھر لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ باقی نہ رہے گا. آپ نے فلنگ دا بلینکس میں جو ڈالا ہے وہ میں ازیوم کر سکتا ہوں ایک دو چیزیں. اللہ تعالیٰ جی آپ کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں کرے. مہاجبین میم بہت شکریہ, السلام علیکم غزنفر. اور واٹ از دا ٹاپک, ٹاپک یہ ہے کہ واٹ از یور بگیسٹ فیئر, آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ کیا ہے, یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. مرینا بلال ماسب موجود, السلام علیکم جی. آر جے جی ایم کے ویلکم, لاہور سے آپ سن رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. اگر آپ نے اسٹیٹس دیکھ کے کامنٹ کیا تب بھی شکریہ. اگر آپ سن رہی ہیں لازمی بتائیے گا, چونکہ آپ نے بہت عرصے بعد آپ نے ہمارے جس پروگرام میں کامنٹ کیا ہے, آپ ہماری بہت قابل احترام اور کافی سینئر لسنر ہیں, تھینک یو سو مچ. ارم لاہور سے, اور پنجاب انگلش سانگ آپ کہتی ہیں جی پلے کر دیں, ہم کر دیتے ہیں جی انگلش سانگ اب سے کچھ ہی دیر بعد. کنگ فضل کھاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمد صدیق دار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. گل اویزا آپ کا بہت شکریہ. عظمیٰ علی فرام سوان, السلام علیکم بھائی, فرسٹ ٹائم میسج کیا, تھینک یو سو مچ. ہانی عباسی, السلام علیکم جی, کیا حال ہے, تھینک یو سو مچ. نور خان آپ ہمیں میسج کریں, کیسے ہیں بھائی. میں بالکل ٹھیک ہوں دوستو, آپ کیسے ہیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی, آپ لوگ یاد رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں. کالز آ رہی ہیں ڈھیر ساری, کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن وہی ریکویسٹ کہ نئے لوگوں کو پلیز موقع دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں وہ کال کر سکیں, تب ہم پھر ڈھیر ساری گپ شپ بھی کریں گے. اور ایک بار پھر جی طویل انتظار کے لیے معذرت, جو آج بیک ٹو بیک کافی زیادہ گانے آپ نے سنے. آج کے پروگرام کی سب سے پہلی کال, السلام علیکم. اللہ لیو کیڑے پاس ٹور پہ ہوں, آپ کی کال مل چکی ہے. چلیں جی نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. ایک چیز ہم نے سیٹ کی دوسری خراب ہو گئی. السلام علیکم.
1: ہیلو,
0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام, کیا حال ہے.
0: मैं बिल्कुल ठीक प्यारे भाई, कैसे आप? ठीक है से ठीक है आपकी? आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है मेरे प्यारे भाई, अब बोलिएगा। ठीक हो गया। अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे भाई, अगर आप दोबारा डायल करते हैं तो बड़ी आसानी हो जाएगी बात करने में। आवाज कम आ रही है मेरे दोस्त। अच्छा आप मुझे अपना प्यारा सा नाम बता दें, किस जगह से कॉल किया आपने?
1: पिंडी।
0: पिंडी से कॉल की है, ठीक हो गया। आपका नाम क्या है?
1: ओ यार,
0: प्यारे भाई माजत के साथ, आपकी आवाज बिल्कुल बीच में ब्रेक हो रही थी, इस वजह से कॉल ड्रॉप करना पड़ी। अदरवाइज आप जानते हैं कि मैं कॉल ड्रॉप नहीं करता। डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और इस वजह से मैं माजत चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट कॉल देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: यानी भाई त्रेड़वान बोल रहा
0: था। त्रेड़वान साहब, क्या हाल है आपका?
1: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, और बहुत ही तवील अरसे तो बाद तुसनी शो विच हाजरी दिती है। ते सुनना भी ता कि पुराने कालर ना हो इतरे बज जाओ, ते पुराने कालर इतरे बज जाओ, पुराने कालर ये हर शो ने विच रील लग रहे हैं, तुसी आने रहने हो तक पुराने कालर। पुराने कालर जड़े
0: सर वो उस्ताद है हमारी, और आपको पता है कि
1: आपके मानी भाई उस्ताद हैं, उनसे आपने कुछ सीखा मेरे ख्याल है। मैं नहीं कहता कि आपने मेरे काबिल एहतराम है, मैं ये नहीं कहता कि वो ज्यादा अखलाक से गिरी हुई बात ज्यादा नहीं करना चाहता, कि उनके मैं शो को इस तरह से सलाम और अल्लाह पाक उनको जन्नत
0: आमीन आमीन
1: बैक टू बैक काले लेते थे, बैक टू बैक, ये उनका वादा था।
0: ऐसे बिल्कुल
1: ऐसे भी काले आती थी, जो उनका टॉपिक जो होता था एनडीए से भी काले आते थे,
0: बिल्कुल ऐसे
1: बताते थे कि ये काल उधर से आ रही है,
0: बिल्कुल ऐसे जी, इसमें कोई शक नहीं है।
1: मैम सदर के शो में हम एंट्री करते हैं दिन को, और वो आधे घंटे में जो काले लेती हैं वो 15-20 काले लेती हैं आधे घंटे में। ठीक हो, जो भी गिल्ला गुलामा करते हैं आप मैम पर बात डाल देते हैं कि उन्होंने गाया है जी इस तरह गाने चलो, आधा घंटा पूरा इस तरह गाया हो जाता है। पुराने कालर क्या करे थे, नया पर कालों कालों का आपका अरमान लगता है, तो काले ज्यादा थे ना, लोग एंट्री करे मोहब्बत करते हैं आपसे।
0: क्या बात है त्रेड़ साहब, आपने तो दिल खुश कर दिया। ठीक हो गया सर।
1: और मैं सब सुनने वालों को जो जो जिन्होंने मेरी रोजा मोहतरमा का अफसोस किया है उनका मैं शुक्र गुजार हूँ। अनिला बाजी है, मार्गी शहजादी है, और एम स्टाफ मलिक को मैं दोनों हाथों से सलाम और सलूट पेश करता हूँ कि उनका कलर बैठ गया अनाउंसमेंट कर कर के हर शो में उनका, उन्होंने इतनी पदीराई की कि मेरा और उनका तारुफ कराना कोई इस तरह नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है। हमको सब लोग जानते हैं कि कागज पे नहीं मानते, लिखा शजर न सफात करने से कबीले पे जानते हैं, जो जितने पानी मैं हूँ मुझे आप सब जानते हैं, और जो जो भाई आप वो सबको मैं जानता हूँ।
0: आपसे
1: बात करना चाहूंगा कि मेरा एक ही बच्चा है, वो एक दुकान किराए की दुकान का मान नहीं करना चाहिए, जो खाकर गांव आ जाती है उसका मान नहीं करना चाहिए, तो वो किस वक्त टांग मार जाएगी, दूध उल्टा डुल जाएगा, या मकान किराए का हो तो उसका भी मान करना चाहिए कि कोई पता नहीं है मालिक मकान किस वक्त उसको जवाब दे देगा, खाली कार मकान,
0: बिल्कुल ऐसे।
1: और उसके बाद ये जो है कि मेरा एक ही बच्चा है, मैं उसका डर है कि कहीं वो ना तो इससे चला जाए या खो जाए, मैं हर रोज उसका सदका देता हूँ, हर वक्त उसके लिए दुआ करता हूँ। मेरा एक ही बच्चा है जो इस तरह से जो जिन जिन्होंने भाइयों ने भी मेरे लिए दुआएं की हैं, मैं उनका शुक्र गुजार हूँ, उनका मैं हाथ बन के शुक्र गुजार हूँ। अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और अल्लाह पाक उनके जो नवाज़ीन चले गए प्यारे दुनिया से, उन सबको अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके जन्नत और फिरदौस में जगह अता करे।
0: आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया त्रेड़ साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। और क्या जबरदस्त स्टेमिना है जी त्रेड़ साहब का। बिलाल अहमद नुशहरा से वास्ता मौजूद है जी, सियालकोट कैंट से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मैंने भी फर्स्ट टाइम मैसेज किया और आपने कहा जी मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और आपने जी जिसने पहले लिखा था कि हमने बहुत मिस किया, आपने दोबारा मैसेज किया लेकिन शॉर्ट मैसेज किया, प्लीज़ अपना नाम लाजमी बताया करें ताकि हमें पता चल सके कौन हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं। और दोस्तों मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि आप में से किसी की भी दिल आज़ारी हो, मेरी कोशिश होती है कि ढेर सारी कॉल्स हम शामिल कर सकें। और लालियो केड़े पास टुर पे हो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, साहिल अंसारी बोल रहा हूँ हैदराबाद।
0: हैदराबाद से शायद अंसारी साहब, क्या हाल आपका?
1: अल्लाह का शुक्र है। पहले जरा शेर सुनिएगा, क्या अच्छों ने अच्छा और बुरों ने बुरा जाना मुझे। जितना जिसका जर्फ था उतना ही पहचाना,
0: उतना ही पहचाना मुझे। अंसारी साहब, जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है?
1: मेरा मौला क्या करम से है, जो अल्लाह से डरता है किससे नहीं डरता,
0: इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी कोई चीज होती है ना यार, मैनू डर लगता है ये ना हो जावे।
1: मैनू डर नहीं लगता, मैं सिर्फ मौला के करम से वो करता हूँ कि नहीं चल यार, जो वक्त गुजर जाए, इसलिए अगर मैं किसी से माफी मांग लेता हूँ तो इसमें कोई मेरा डर नहीं है। मेरे मौला के करम से मैं किससे नहीं डरता।
0: क्या बात, ठीक हो गया अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए।
1: देखो आज आखिरी प्रोग्राम में एक तो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा है यार पिछली दफा जो मैंने नगमा गाया था वही नगमा मैं गाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे।
0: अंसारी साहब देखें, ऑलरेडी ना बहुत 40 मिनट हो गए, की कराना था। कर लेते कर लेते, बहुत शुक्रिया जी अंसारी साहब, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तुसी करनी तो वही होंगी जेड़ा तुहाड़ा दिल करता। बहरहाल फिर भी आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अंसर मौजूद है रावलपिंडी से, और कहते हैं भाई क्या टॉपिक रख दिया है, इतने ढेर सारे डर हैं और धीरे धीरे वो डर कुछ मुकम्मल भी हो रहे हैं। और अब्दुलरहमान रांझा हमारे साथ मौजूद है मड़ी बहावद्दीन से, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान भाई, आपने मैसेज किया, प्लीज़ टॉपिक पर थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया करें, कुछ दिल की बात बता दिया करें, अगर टॉपिक पे दिल नहीं कर रहा होता बात करने का, अपना कोई पैगाम दे दिया करें कि किसी दूसरे तक अगर कोई चीज़ कोई पहुंचाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए। और दोस्तों मैं अपने प्रोग्राम में पानी के इनटेक के हवाले से लाजमी आपको कहता हूँ कि पानी का इनटेक आज कल लाजमी करें, चूँकि बहुत ज़रूरी है ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कौन सा मौजूद है उसको भी हम देख लेते हैं प्रोग्राम में, कौन हमें कहाँ से मैसेज कर रहा है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। रोजी शेख मौजूद है जी, थैंक यू सो मच, आपने कहा जी हाइट से डर लगता है आपको। मरीना बिलाल ने मैसेज किया जी, जी एम के मैं आपके प्रोग्राम सुनती हूँ, आप अक्सर टेक्स्ट पढ़ते नहीं तो मैसेज करना ही छोड़ दिया, आज किया है जी, मैंने प्रोग्राम सुना ही तो मैसेज करती हूँ, थैंक यू। और बहुत शुक्रिया मरीना आपका, आपने मैसेज किया। नहीं मैं कोशिश ज़रूर होती है कि सारे मैसेजेस पढ़ें, लेकिन कई दफ़ा इस तरह हुआ कुछ मैसेजेस रहे हैं, उनके लिए माज़रत चाहता हूँ। किश्वर आरिफ साहबा, डॉक्टर साहबा आपका क्या हाल है, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया, वेलकम बैक कर रही हैं। उस्मान बिन इमदाद हमारे साथ मौजूद है जद्दा से, सुन रहे हैं और आपको बहुत मिस किया, बहुत अच्छा वापस आ गए जी। और आपने कहा आपका फियर जो हाइट है, मुझे बहुत हाइट से डर लगता है, पाकिस्तान से जबा, थैंक यू सो मच जी। इसके अलावा महाजमीन मैम आपका शुक्रिया कहती हैं, वालदैन खोने के बाद अब कोई डर नहीं, वैसे मैं कॉकरोच से डरती हूँ और मुझे हाइट फोबिया है, कॉकरोच से तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डरता हूँ जी। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आप
2: जी? कैन साहब, मैं साइदार हूँ लाहौर से।
0: लाहौर से, एक दफ़ा नाम फिर बता दीजिएगा। साजिद बात कर रहे हैं, साजिद भाई कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी?
2: अल्लाह का शुक्र है, आपकी आज आवाज सुनने बहुत अच्छा लगे
0: सर, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत अच्छा लगा। साजिद भाई टॉपिक पे क्या कहेंगे?
2: टॉपिक तो मैं अब तक दो तीन अशआर आपको सुनाता हूँ, टॉपिक पे भी बात करूंगा आपसे।
0: ठीक हो गया सर,
2: दर्द मोहब्बत का कुछ इस तरह उतारा हमने, दर्द मोहब्बत का कुछ इस तरह उतारा हमने, पर अपने ले लिया हर एक हजारा हमने। चुपके रोए हैं बहुत रूह के वीराने में, चुपके रोए हैं बहुत रूह के वीराने में, सुन लिया जब भी कहीं नाम तुम्हारा हमने।
0: अरे क्या बात है सर, कमाल करते हैं आप। सर टॉपिक पे आप क्या कहेंगे?
2: टॉपिक ये बात है कि हमारे प्यारे भाई कॉलर अनिल साहब है, विशाल साहब है, सलमा आप है, और भी बहुत सारे कॉलर है जो हमारे दिल के करीब है, आप जैसे आर जे, तो दिल में डर रहता है कि कहीं ना कहीं या हमारे कॉलर जो भी है छोड़ने वाले हैं हम से, कहीं ना कहीं उधर कोई ना कुछ हट जाए, ये डर रहता है क्योंकि हम इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
0: ठीक हो गया, ठीक है, चले सर, बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है,
2: थैंक यू जी,
0: अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे रेगुलर कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। ये प्लीज हैंड फ्री दोस्तों ध्यान रखा करें, जब भी आप कॉल करते हैं ना तो हैंड फ्री जब आप यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती है, और इसके अलावा जो है रेडियो सेट की आवाज़, तो ऑब्वियसली अब जो लोग कॉल करते हैं वो ऑफ ही करते हैं, बहुत कम इस तरह होता है कि बाज़ूकात आप साथ साथ रेडियो भी सुन रहे होते हैं और टेलीफोन से अगर कॉल करते हैं तो आप नहीं सुन पाते। तो बहरहाल दोस्तों ये बताइएगा कि गर्मियों का मौसम जो है वो कैसे आप गुजार रहे हैं, आप इस दफ़ा जो गर्मी पड़ रही है ख़ासकर इस मंडे से ऑनवर्ड जो सूरत हाल हुई बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बर्दाश्त से बाहर थी चीज़ें, पंजाब में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हम पिंडी इस्लामाबाद वाले, फिर हमारे पास एक मरी का ऑप्शन है, इधर मारगला हिल्स हैं यहाँ पे आप आ जा सकते हैं तो थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिल जाता है, लेकिन जो है पंजाब में दिगर सिंध की अगर बात की जाए वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल गर्मियों का जो टेन्योर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, बाकी के मामलात जो हैं वो कम सर्दी जो है उसका टेन्योर काफ़ी आपको कम दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम।
0: सर जी बस वापस आ गया ना तुसा नहीं मोहब्बत
3: नसी जा रहे हो ना, गल सुनो उधर भी जनाब नसी गए हो, दुए दिन फिर नसी गए हो, तुसा जनाब गल सुनो असा इंतजार ही होने फिर तुसा भड़काई छोड़ा जनाब दसर की तुसा कोई गोशा करी गए माड़े बाड़े, गल है कि दसो कि केड़े बंदे की पता नहीं कि मैं रेडियो टीवी
0: मैं आज कार भी बड़े जरगे मुका के हैं, तुसी ते और नवा जरगा ला देता
3: मेरे नहीं, नहीं, आप कने कने पे बाणे तो फिर मदसर की मैं किबला दुरुस्त कीता फिर मदसर साहब ना पे
0: सर
3: मैं बाद में कीता ते तुसा कने पे बाणे हो गल दा याद है तुसा साडे नाल प्यार कर रहे हो या तुसा साडे दुश्मनी कर रहे हो
0: अल्लाह कोई ना कुछ भी है तुसा ही क्या लगना मैं उस नाल क्या करना दसो
3: उस्ताद जी भी पता तो प्यार कर रहे हो छे हो तुई गल है कि उस्ताद जी मैं आखा
0: रोटी खाओ अल्लाह सेहत जिंदगी देवे
3: सुनो तुई गल है तको
0: अरे क्या बात जी,
3: और
0: क्या
3: मैं रेडियो में गुनगुनाता हूँ गाने गाता हूँ और हमारी जितनी आते हैं हमारी बेटियाँ तमाम पसंद करती है वो कहते हैं गाना गाए गाना गाने का इतना प्यार दुनिया कहती है की इतनी खूबसूरत आवाज और इतना अंदाज और बोलते हैं
0: बस अगला जो प्रोग्राम है ना उस मुहर्रम तो बाद जो होगा उससे ना
3: सिंह जी बाकी ये जो टॉपिक रखे सिर्फ गल करता थोड़ी जी
0: करो ना जी करो
3: उस्ताद जी तुसा आख्या के केड़ी चीज को छोटी डर लगना
0: अच्छा
3: उस्ताद जी ए हाल ले आना ता फिर उसका की डर लगती एक तक की डर लगना करा पानी है तो पानी है तो
0: माड़ा मकसद बिल्कुल नहीं बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखा है ठीक है
3: جناب لاہور تو اس بچی کے ماسٹر کو بہت بہت سلام پیش کرے.
0: جزاک اللہ بہت شکریہ.
3: تو دوئی گل ساتھ جڑا کرے نا بریک لاو نا دوئی گل جناب دیگیر کی ہری صاحب پیٹی تو اچھے بڑے اچھے دا دی جانے انہاں کی ماسٹر کو سلام پیش کر چڑے اگر کوئی غلطی ہوئی گئی تے دو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا استاد جی معاف کرے.
0: خوش رہو
3: زندہ باد.
0: بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. تھینک یو سو مچ جی ہمارے یہ بزرگ ہیں. اور میں کی کراں چلیں جی محبت کرتے ہیں آپ لوگ بہت شکریہ. اور اس طرح دوستو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آن ایئر آرجے مدثر کے ساتھ کوئی اس طرح دیکھیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم آپ سب سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی ہی وجہ سے ہم آرجز ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کا خیال رکھا کریں. ایک چیز اپنا ڈسپلن بنائیں کہ کال کر کے میری ویسے یہ کوشش ہوتی ہے کوئی کسی کے بارے میں بات مت کرے کسی آرجے کے بارے میں. مجھے جن آرجز کی ٹائمنگ کا پتہ ہوتا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. کسی آرجے نے اگر آپ کو ڈانٹ دیا ہے یا کال ڈراپ کر دی ہے میں تب بھی کہتا ہوں چلے میں ان سے بات کر لوں گا. تو تھوڑا سا آپ رول فالو کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا جب میں آ کے آپ کو کہتا ہوں کہ یار جی آپ پرانے کالر کال نہ کریں نئے کالرس کو موقع دیں. لیکن اب وہ ہوتا یہ ہے کہ نا ایک جیسی چیز ہو جاتی ہے. آپ ریڈیو اسٹیشن آپ ٹیلی ویژن پہ یا کہیں پہ بھی اگر کوئی پروگرام دیکھیں اگر ریگولر کچھ کالرز آتے رہیں گے تو آپ ایک ٹائم تک کہیں گے کہ یار یہ صرف یہی لوگ سنتے ہیں اور جوائن نہیں کرتے. تو اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. خدا نہ خواستہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل کال نہ کریں. آپ کیا کریں جی آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. ڈاکٹر بسمہ اعظم ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. ہمارا جی نیکسٹ دوسرا جو نمبر 0519202540 0519202540 پہ آپ کال کر سکتی ہیں. میں ویسے 111 پہ بھی بیک ٹو بیک جتنے میں نے کالز لیے ہیں اسی پہ لیے. ہمارا ایک ہی نمبر ہے جس پہ جو اٹیچ ہیں ایک ہی فون ہے جس پہ دونوں نمبر اٹیچ ہیں وہاں پہ کال آتی ہیں. عبد الرحمٰن رانجا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا ایک کوشچن ہے کہ لوگ بدل کیوں جاتے ہیں. رانجا صاحب یہ سال خالی تھوڑا کوشچن نہیں ہے یہ ساری دنیا کا ہی کوشچن ہے کہ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں. دیکھیں وقت جو ہے نا یہ آپ سے کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ کرواتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں حالات بدلتے ہیں. آپ آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے کی زندگی دیکھیں آپ کے ساتھ اس وقت کچھ اور لوگ منسلک تھے. جاب آپ کی شاید ڈفرینٹ جگہ ہو دوست ڈفرینٹ ہوں. ہاں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ابتدا حیات رہتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں جن سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں گھریلو معاملہ اپنے دل کی کوئی بات کوئی لین دین کے مسائل کوئی ادھار والے مسائل. ہر بندہ دوست بھی نہیں ہوتا اور اس طرح نا چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اور لوگ کیوں بدل جاتے ہیں یہ ہر شخص کا نا ایک اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. اپنی زندگی جس ڈگر جاتی ہے کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ وہیں رہ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈسٹنس جو ہے یہ آبویسلی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ صدا کوئی ایک جیسی چیز نہیں رہتی. صدا بادشاہی نہیں رہتی صدا جوانی نہیں رہتی صدا پیسہ آپ کے پاس نہیں رہتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک چیز ایک فارمولا آپ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہر پل میں زندگی ہے اور نہ جانے یہ کب ختم ہو کسی کو نہیں پتہ. کسی کو بھی آنے والے پل کا نہیں پتہ ہوتا. جو ہر پل اس کو نا آپ دو لائنوں میں سمو دیں کہ ہر پل زندگی ہے جو آپ جی رہے ہیں. کوشش کریں کہ اس ٹائم کو اچھا جی سکیں. اور آج کل کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جینے کے لیے خوشی کے لیے جیب میں نوٹ ہیں تو آپ خوش رہیں گے. یہ ایک نہ ایک پیرل میں چیز چلتی ہی چلتی ہے. آپ سائیکلوجیکلی بھی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے والیٹ میں آپ کے بٹوے میں پیسے ہیں تو آپ سکون میں رہیں گے. خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یار کوئی مہمان آ گیا کوئی اور آنا جانا ہو گیا کچھ اور ضرورت پڑ گئی تو میں کیا کروں گا. تو وہ ایک پیرل میں تمام چیزیں چلتی ہیں. لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ بس ہر پل میں زندگی ہے اچھا گزارا کریں. السلام علیکم جی یہ ریڈیو سیٹ کی آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آواز آپ کی کٹ رہی ہے دوبارہ نام بتائیے گا. ہمنا فرام جرمنی. تھینک یو سو مچ ہمنا آپ نے جرمنی سے. اس وقت وہاں جرمنی میں ٹائم کیا ہے؟
4: جرمنی 9 بج چکے ہیں.
0: اچھا رات کے 9 بج چکے ہیں.
4: ہاں جی.
0: मतलब ये ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटों का फर्क है।
4: जी 5 घंटे का फर्क।
0: ठीक हो गया। हमने बहुत शुक्रिया, आपने इतने दूर से पार्टिसिपेट किया। टॉपिक सुना आपने, फियर क्या है?
4: मैं स्टार्ट से सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम,
0: अच्छा
4: 5 मिनट पहले जीवन घर लेती हूँ मैं तो।
0: चलो बहुत शुक्रिया। तो बिगेस्ट फियर क्या है आपका, मतलब आपका बिगेस्ट फियर क्या है, क्या चीज सबसे बड़ा डर है आपको कि यार ये?
4: यानी भाई मुझे ये डर है कि मेरे पेरेंट्स को पता ना चल जाए कि मैं रेडियो सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये उनको पता ना चल जाए कि आप रेडियो सुनती हैं? क्या बात है जी, मतलब अल्लाह ले हो किड़े पास टूर पे हो। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी?
4: सलाम कहना चाहूंगी।
0: जी जी आप कहें सलाम।
4: रिमशा जो लाहौर से आती है उसे सलाम, और शहजाद भाई अनुला भी का सलाम। रिमशा को मेरा बहुत सा सलाम है।
0: चले रिमशा को बहुत ज्यादा
4: बहुत शुक्रिया,
0: अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ठीक है,
4: उसे रिमशा की रिक्वेस्ट है कॉल करें। ठीक है
0: ठीक है, चले जी, थैंक यू सो मच जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया जी। आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, 1:05 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक का 2 बजे तक। और एक मैसेज है आप काफ़ी लेंथी है, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करूँगा, चूँकि 4471 पे मैसेज आपको टाइप करके काफ़ी मेहनत लगती है, आप फ़ोन से करते हैं। जिया न्याजी फ्रॉम इस्लामाबाद, इस्लाम भाई कैसे हैं? और डर का टॉपिक था तो मैसेज किया। वैसे तो दूध बॉयल कर रहे हो तो इधर उधर देखने से डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए कहीं, और दूसरे का जब कॉकरोच आ जाए रूम में तो डर लगता है कि भाई के उड़ना ना शुरू कर दे। आप कॉकरोच का मैं थोड़ा सा सीट चेंज कर ले, मत भी मैंने क्यों बार बार डरा रहे हो। मैं वैसे भी स्टूडियो में जब प्रोग्राम करता हूँ तो बिल्कुल अंधेरा होता है, तो हमारी ये जो ये एक सेटअप है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, काफ़ी जो है वो प्यारा है। ये ना हो यहाँ से कोई कॉकरोच आ जाए, इतना ज़्यादा आप लोग बार बार याद कर रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का, और दूध बॉयल करने वाली बात बिल्कुल ठीक आपने कही। इसके अलावा बिलाल ने मैसेज किया, बिलाल मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये मैसेज थोड़ी देर पहले माजवीन ने भी किया था वालिदैन के हवाले से। अब कहते हैं जी मेरा नाम बिलाल है, और टॉपिक पे आपने कहा मुझे ज़िंदगी में अम्मी अबू को खोने का बहुत डर लगता है, और मैं इनको खोना नहीं चाहता, और मैं अम्मी अबू के लिए हर टाइम दुआ करता हूँ कि वो मेरे लिए अल्लाह पाक सलामत रखे उनको, और अल्लाह पाक उनको हर किस्म की आफात से बचाए, आमीन। और मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों से कि वो अपने वालिदैन की कदर करें और उनसे दुआएं लें, क्योंकि वालिदैन जिंदा हों तो मैं कहता हूँ कि इंसान को दुनिया में और क्या चीज़ चाहिए। वालेकुम सलाम, आपने एंड पे लिखा है। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक आप इस पर बात की, और यकीन जानिए मेरे भी जब ये मैं सोच रहा था कि आज टॉपिक क्या होगा, यही बात जहन में चल रही थी वालदैन के हवाले से, चूँकि ये जो हमारी जनरेशन है इस वक्त ख़ासकर जो 90s के किड्स हैं वो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त जो है वो फेस कर रहा है। आपने वालिदैन की जवानी देखी है, अब आपने उनका बुढ़ापा देखना है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप जानते हैं कि आजकल की खुराकें कैसी हैं, बीमारियों की तरफ मामला जाते हैं, आपने उनकी बीमारियां देखनी है। अल्लाह ना करे कि किसी औलाद को उनकी वालिदैन की बीमारियां देखनी पड़ें, और किसी भी शख्स को उसकी अपनी औलाद की तकलीफ देखनी पड़े। तो ये किड्स अभी वालिदैन को बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं, कुछ के वालिदैन उनके सामने दुनिया से चले गए, कुछ के बहन भाई दुनिया से चले गए। तो ये एक ना नेचुरल मामला, ये अजल से चला आ रहा जब से दुनिया बनी है। तो ये बिलाल भाई आपने वही चीज़ जिक्र की जो मेरे जहन में चल रही थी, जिस हवाले से मैंने टॉपिक रखा, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों काफ़ी देर से बैक टू बैक मैं बात कर रहा हूँ, उस चूँकि हमने काफ़ी पहले 3-4 गाने चलाए थे, हम एक चीज़ चेंज कर रहे थे। एक ज़बरदस्त सा गाना आपको सुनवाऊँगा, फिर वापस आएंगे, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, और देखते हैं कि मज़ीद हमें जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं और क्या गपशप करना चाहते हैं। इसरार की आवाज़ को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगी, 1-2 दफ़ा पहले भी ये ट्रैक मैंने प्रोग्राम में शामिल किया, नहीं इसरार का नहीं, हम शामिल करते हैं अधिका कहने की आवाज़ को, और बड़ा ज़बरदस्त ये है, और इसके कुछ लिरिक्स बहुत कमाल के आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है,

एक बज कर 13 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, आप हदीका क्यानी की आवाज़ इस वक्त सुन रहे थे। हमारे साथ तमानुल्ला मौजूद हैं, मेरी तरफ से आपको सलाम, तमाम सुनने वालों को सलाम। मेरी रिक्वेस्ट है कि पश्तो वाला गाना चलाएं और इसके बाद 2 स्पेशल मेरे भाई आपने सलाम देने हैं। और कहाँ कहाँ आप सलाम दे रहे हैं जी? कतर में फरीदुल्ला और दूसरे जो है वो यासीन, आप इनको सलाम देना चाहते हैं। आई थिंक दोनों दोस्त जो है आपके कतर में हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो अमानुल्लाह की जानिब से आपके दोनों दोस्त जो हैं फरीदुल्ला और यासीन साहब को 101 की पूरी टीम की जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। आज 4477 पे काफ़ी बड़ी तादाद में आप दोस्तों ने मैसेज किए हैं जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त नेक्स्ट कुछ SMS हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं फेसबुक पे, और फेसबुक पे कौन हमारे साथ मौजूद हैं और वो क्या कहना चाहते हैं देखते हैं किस वक्त। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे हमारे साथ जो फीडबैक है वो कौन दोस्त हैं और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमें ज्वाइन करिए, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है। इसके अलावा RJ गज़नफ़र क्यानी के नाम से एक पेज, आप उसको भी

0: फॉलो कर सकते हैं। सारा अली जई हमारे साथ मौजूद है जी। आपने कहा जी बस मौत से डर लगता है और अपने वालिदैन को खोने से डर लगता है, इस दुनिया में आपके वालिदैन से बढ़कर कोई भी आपका नहीं होता, बाकी सब रिश्ते सब मतलबी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सारा आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और इसमें कोई दो राय नहीं है। उज़्मा अली नूर फ्राम सोहान रेडियो के, ठीक है जी। सारा अली हेलो गज़नफर भाई, कैसी हैं आप सारा? और रोज़ी शेख हमारे साथ मौजूद, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। सारा आप कुछ अपनी फ्रेंड्स को भी टैग करती थी कुछ टाइम पहले प्रोग्राम के हवाले से, तो आप लोग ज़रूर सुना करें जी और लाजमी फीडबैक भी दिया करें इस प्रोग्राम के हवाले से। जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं, जमशेद भाई आपका बहुत शुक्रिया। और कहते हैं जी मुझे डर लगता है कहीं मैं भूखा ना रह जाऊँ, मुझे मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, बस जैसे ही मुझे भूख लगती है मेरा दिल करता है कि बस जल्दी से कुछ ना कुछ मैं खा लूँ। अरे क्या बात है भाई, आप तो शहजादे लगे हैं। मिर्ज़ा खावर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हाल है मेरे भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट कॉल देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे
1: हैं जी? मेरा हॉल से रिमशा भाई, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक। रिमशा आपके लिए बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि रिमशा को कहें हमें कॉल करें।
1: हम पता नहीं, वैसे मैं तो अच्छी तो नहीं हूँ, आपको लगती हूँ?
0: नहीं मतलब ऑब्वियसली लोग आपको पसंद करते हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि उन्हें क्या कॉल करें।
1: मैं ज्यादा शरारते करती हूँ ना इसलिए।
0: ये भी हो सकता है। बताएं सेहत कैसी है आपकी, अब ठीक है?
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सेहत तो बिल्कुल ठीक है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि टॉपिक पे क्या कहेंगे?
1: टॉपिक पे मैं ये कहूंगी भाई, मुझे सबसे ज्यादा डर जो लगता है ना वो ये है कि मेरा निकाह हो चुका है ना, तो मुझे डर इस चीज का लगता है कि मुझसे ना अगले घर यानी अगले ससुराल में मुझे ऐसी कोई गलती ना हो कि जिसकी वजह से मामा को बातें सुननी पड़े।
0: अच्छा ठीक हो गया, आप कह रही हैं कि कोई आपसे ऐसी गलती ना हो जिस वजह से आपकी
1: मामा को जो कहे कि आपकी बेटी ने ये कर दिया है ये कर दिया, बात ना सुननी पड़े।
0: अच्छा,
1: इस चीज से डरती हूँ।
0: चले जी।
1: और एक फनी बात ये है कि मैं कॉकरोच से भी डरती हूँ, चूहे से, बिल्ली से, बिल्ली से नहीं बाकी सब चीजों से डरती हूँ। और एक तो आपके जो रेडियो पे जो दो आरते हैं निशान भाई आतिफ भाई, दोनों भैया से मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ जब इनके शो में कॉल करती हूँ।
0: अच्छा, आप उनको कॉल करने से भी डरती हैं? उनको कॉल किस तरीके से डरती हैं?
1: क्योंकि जो आतिर भाई है ना वो बिल्कुल ना सीरियस शो करते हैं, यानी अच्छा करते हैं, शायरी का शो करते हैं, लेकिन ना वो वास्तव में इतने सीरियस हो जाते हैं जब उनके शो में कॉल करो तो वो मुस्कुराते भी नहीं है। और निशान भाई के शो में जब कॉल करो तो डर लगता है कि कहीं ऐसी मुंह से बात ही ना निकल जाए, आगे से झटका पै जाएंगे।
0: अच्छा, झटका पै जाएगा?
1: हाँ झटका पेंगे, फिर वो बोलेंगे कि ये आपने बात क्या कर दी। और मैंने तो आतिर भाई को छेड़ भी दिया था कि आतिर भाई अब हम बच्चों को वो कहते थे ना कि सो जाओ चुड़ैल आ जाएगी, अब ये कहते सो जाओ आतिर भाई निशान भाई आ जाएंगे।
0: ठीक हो गया, मैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का।
1: और जाते जाते मैं इश्तियाक अंकल को और मेरी बहुत ही प्यारी बहन आई थी हमना और उसे भी इस्लाम और साथ में अनिला आपकी और मारी आपकी के लिए एक ही जुमला उनका, किचन चरा दिता ही मारी आपी, रेडियो से कॉल वाला नहीं कम कर दिता ही, बहुत कम आती है मारी आपी।
0: हाँ ऐसे ही कम आती। चलें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच। समरा हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं जी आप लोग जो हैं कुछ कॉलर्स आपसे सिर्फ कॉल करते हैं लड़ाई करने के लिए, और आपने कहा कि कॉकरोच के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात आपने की कि मतलब आप कॉकरोच का जिक्र करें, तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नज़र आया तो मैंने काफ़ी रोला रप्पा डाला है यार, मैंने तो ना डरा ना अल्लाह ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले जी आप कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम।
0: प्यारे भाई क्या हाल है?
2: ठीक है,
0: मैं बिल्कुल ठीक। अपना प्यारा से नाम बताएं।
2: शायद
0: बहावलपुर से। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ टॉपिक पे सर।
2: क्या है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक बेटा है।
0: अरे क्या, अल्लाह ताला उसको हमेशा सेहत वाली जिंदगी दे।
2: वो एक क्रिकेटर बने, इमरान नजीर या शायद खान असली जी बने।
0: अच्छा आप ये दुआ करते हैं? चले सर अल्लाह ताला आपका ये ख्वाब पूरा करें, बस मेहनत करनी है आपने उस बच्चे के साथ।
2: तो वो छोटा है, उसको स्कूल पढ़ाऊंगा फिर क्रिकेट से।
0: जी जी स्कूल भी साथ, हाँ जी जी स्कूल भी साथ पढ़ाएं, कहीं करीब कोई देखें एकेडमी तो वहाँ पे उसको आप एडमिशन लेके दें और उसके साथ आया जाया करें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है,
2: ठीक
0: है, चलो बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। मारिया हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, कहती हैं जी हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, आ जाओगे एक दिन फिर तुसी कोई। अच्छा आपने ट्रैक के वाले से कमेंट किया है। सारा अली कहती हैं कि आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सारा ये थोड़ी देर पहले जो वालदैन के हवाले से बात हो रही थी उस पर कि उनकी तकलीफ उनका पेन और इस तरह की चीज़ें जो हैं ओबियसली चूँकि अब वो मैंने बात की थी कि अब हम उस एज से गुजर रहे हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमारे सामने बुज़ुर्गी की तरफ जा रहे हैं, मतलब बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको इस तरह देखना एक वक्त में इतनी माशाल्लाह उनको जान जोखों से काम करते हुए, अब जब वो कहते हैं कि यार अब नहीं होता आप देख लें, तो बड़ा ना वो एक अलग सा वो फीलिंग होती है। अल्लाह ताला सबके वालदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। ये थोड़ी देर पहले किसी ने पश्तो ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, हल्का सा म्यूज़िक सुनवाता हूँ, ये सुने मैं, जल्दी से गपशप लगाते हैं फिर।

0: 1:25 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। सारा बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, कहती हैं कि सालगिरह आपकी गुजर चुकी है लेकिन आप विश कर दें जी, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो सारा 1:1 की पूरी टीम की जानिब से, और जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं आप में से किसी भी दोस्त की। वो हमारे कार्जे होते थे बिलाल भाई, जब भी वो अनाउंस करते थे ना कि जिन जिन की आज सालगिरह साथ, वो ये भी कहते थे कि मैं वो वाले जिन नहीं कह रहा, और यार रात के इस पैर जिनों का नाम नहीं लेते, मतलब वो कहते थे कि आज जिस भी दोस्त की सालगिरह है उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। तो हम सारा आपके लिए एक स्पेशल प्रोमो प्ले करेंगे, ये प्रोमो हमारी जानिब से 1:1 की पूरी टीम की जानिब से आपके लिए, जिस दोस्त की आज सालगिरह उन सब के लिए। चले जी, अब हम मजीद कुछ कॉल शामिल करते हैं, आपके मैसेजेस अगर हम तक पहुंचे उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक मजीद मैसेज दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी जो आपकी घर के बाहर की जो गेट के बाहर की जो लाइट है उसको ऑन रखा करें, ताकि स्ट्रीट से गुजरने वाले लोगों के लिए आसानी हो सके, और इसके बड़ा अजर है जी। कुछ लोग नमाज के वक्त निकलते हैं, अगर आपकी जो लाइट है वो ऑन होगी उससे उनको आसानी होगी, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा अजर रखेंगे। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो लाजमी आप लोगों ने घर के बाहर की लाइट जो है वो ऑन रखनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे
1: हैं?
0: बिलाल बात कर रहे हैं हैदराबाद से। बिलाल क्या करते हैं आप? हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह, आप हाफिज़े कुरान है। बिलाल किस चीज से बहुत डर लगता है दोस्त?
1: भाई दुनिया में सबसे कीमती फरमाया आपका वर्ड है,
0: इसमें कोई शक नहीं। अच्छा आप भी वही बात करना चाह रहे हैं, ठीक हो गए मेरे दोस्त। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा आप चले गए, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, आपने बहुत जल्दी जल्दी कॉल ड्रॉप कर दी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, आपकी सेहत ठीक है? जी मैंने बिल्कुल पहचान लिया, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का।
2: बिल्कुल आप पहचान जाते हैं क्योंकि जारी बात है, काम ही यही है।
0: थैंक यू सो मच अनिला। और आपने कब रेडियो कब ट्यून किया था पहले ये बताएं?
2: मैं शुरू से सुन रही।
0: वो लड़ाइयाँ सुनी आपने?
2: जी बिल्कुल सुनी, त्रे भाई आए, शाहिद भाई आए, इश्तियाक साहब आए, हमारे बड़े प्यारे मलिक इश्तियाक साहब, और फिर अभी हमारी बहन आई, हमना आई, रिमशा प्यारी हमारी बहन आई, इन सब के लिए बहुत सी दुआएं साहब है। और ये लड़ाइयाँ नहीं है गजन सर, ये मोहब्बतें हैं, ये उनकी मोहब्बतें हैं। त्रेर भाई हमारे इतने अच्छे कॉलर हैं, बहुत प्यारे कॉलर हैं त्रेर भाई जी, इश्तियाक मलिक साहब जी, और शायद भाई को ना शौक है गाना गाने का, क्या किया जाए।
0: अब बस वो फिर उनको मैंने कहा भी कि सुने और टाइम काटे, ऑलरेडी मैं 5-6 गाने कटे लाए, उन्होंने क्या नहीं पाई थी।
2: शायद भाई ऐसा है कि आप जब आते हैं ना तो आप आपको गजनफर या कोई भी कॉल सॉरी आज होते हैं ना, वो कहते हैं कि 2 लाइनें सुना, 2 लाइनें मतलब 2 या 3 ही होती हैं, 8 लाइनें नहीं होती हैं। बेचारे मेरे जैसे ना जिनकी कॉल अक्सर 2-2 हफ्ते नहीं मिलती,
0: वो मेरे ख्याल से
2: मैं रहती हूँ ना पुरानो मेरे।
0: आप शायद भाई देखें नेक्स्ट कॉल में मुझे कहेंगे जी आप देखें जी बाकी लोग हम पे बातें करते हैं। चले
2: कोई बात नहीं करते उनको, हमें पता है उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार, उनका एक शौक है, वो गाना गाते हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ी खुशी से गाते हैं और इतनी मोहब्बत से, इतना लहक लहक के, आप देखे ना उनके इतने जौक शौक से वो आते हैं और एक एंटरटेन करते हैं सबको आके, इतनी खुशी के साथ, इतनी मोहब्बत है, अच्छा लगता है। सभी बहुत अच्छा आते हैं, जैद भाई अपनी जगह, इश्तियाक साहब अपनी जगह, शाहिद भाई अपनी जगह, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टाइम छोड़ देना चाहिए बाकियों के लिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
0: बहुत शुक्रिया।
2: और बाकी उन सबका आना बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी मोहब्बतों से आते हैं, और गजनफर आप जितनी मोहब्बत और जितने प्यार जितने सब्र से सब सुनते हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझे तंदुरुस्ती दे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: लेकिन बात होता है कि गजनफर मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि देखिए लकीली जिसकी कॉल मिल जाती है, ठीक है, किस्मत से जिसकी कॉल मिल जाती है, उसकी बात पहुंचनी होती है इसलिए मिल जाती है।
0: बिल्कुल,
2: हम चाहे कुछ भी करते रहे, बार दफा नहीं मिलते।
0: बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है।
2: अच्छा टॉपिक जब अल्लाह ताला मौका दे दे, जिसकी मिलनी होती है ना मिल जाती है।
0: बिल्कुल,
2: अब ये नया ना आए पुराना ना आए, ये तो आप अपना एक रूल जो है वो ठीक है उस हिसाब से कहते हो, एक आपका अपना एक वो है, लेकिन फिर भी यही होगा जिसकी मिलनी है उसी की मिलनी है।
0: बिल्कुल,
2: जब जिसकी मिल जाती है ना वो किस्मत से, वो मौका मिलते ही वो कहते हैं बस मैं दिल की सारी बातें कर दूंगा
0: एकदम, शायद सारी साहब वाला काम कर दो है
2: कोई बात नहीं, जिंदाबाद शायद सारी
0: ठीक हो गया।
2: बहुत अच्छे भाई हमारे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मैंने उनकी बेटी की शादी की मंगनी की भी मुबारक दी, मैंने उनकी बेगम की ताजियत भी की, मुझे लगता है उन्होंने सुनी नहीं चले खैर अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अभी पेकॉकी का डर किसी से वैसे तो इतना कोई नहीं लगता मुझे, लेकिन सिर्फ ये डर लगता है कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह नाराज हो जाए।
0: क्या बात, बहुत अच्छी बात की आपने
2: इस चीज को, हर वक्त। और मैं अक्सर अकेले बैठी बैठी रो पड़ती हूँ ये सोच के, यार मुझसे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, किसी की दिल आजारी तो नहीं हो गई, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, जहाँ मुझे देख रेख करनी थी वहाँ ऐसा तो नहीं मैंने कोताही कर दी हो, तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होगा तो मैं क्या करूँगी।
0: बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छी बात की आपने। अल्लाह ताला जी हमेशा आपको खुश रखे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक बड़ी नई चीज आपने ऐड की है,
2: जाते जाते मैं कहूंगी हम ना, हमारी बहन जो आती है जर्मनी से, उसके लिए बहुत सी दुआएं हैं, हम ना को मैं कहूंगी डियर गेट स्कॉट, हम ना
0: ठीक हो गया उनको, मतलब आपने कोई कोड वर्ड्स रखे हैं आपस में, ठीक हो गया, ठीक है चलें अपना बहुत ज्यादा
2: ख्याल। नहीं मैंने जर्मनी ज़बान में उसको कहनी है गेट्स गॉट डंके,
0: हां बस वही ना, मैं इतनी जल्दी तो गूगल भी नहीं कर सकता हूं की क्या है
2: आपको बता दूंगी, वैसे मैं कहने में रशियन ज़बान में भी कह सकती हूं का क्वाशे देला।
0: अरे क्या बात है, चले ढेर सारी आपने जुबानें
2: सीख ली, सबके लिए बहुत सी दुआएं, सब बहन भाइयों के लिए, साझेदार भाई भी ऐसे उनके लिए भी बहुत सी दुआएं आते रहा करें। अल्लाह हाफिज़,
0: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और ये देखें जी ढेर सारी लैंग्वेजेस जो हैं, ये वैसे जो यंग जनरेशन है हमारी, आप लोगों ने लाजमी जो है वो लैंग्वेजेस सीखा करें, चाइनीज जुबान, ताकि आपको काम आएगी आगे और भी डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम
3: जी, अस्सलाम वालेकुम सर, लाहौर से मारिया शहजादी अर्ज करी।
0: अरे क्या बात है, मारिया शहजादी अर्ज करी, कैसी हैं आप, ठीक है
3: अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों ने याद किया, प्यारी सी बहन रिमशा और हमना और प्यारे से भाई त्रेड़वान, सब याद कर रहे थे, सबके लिए बहुत सी दुआएं, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, हैदराबाद से, जहाँ से भी कोई याद करता है ये उनकी मोहब्बत है। असल में मैंने पहले बता दूं कि मैंने रेडियो पे आना कम नहीं किया, तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ तमाम सामाइन से भी और अपने गुजम्फर भाई से भी, कि जो रशीद साहब आते हैं ना बाबुल नगर से, उनकी तबीयत तो नासाज है, उनकी आंखों का भी मतलब अपडेट हुआ है, और वैसे भी उनकी तबीयत जो है ना नासाज है, तो उनके लिए पहले तो दुआओं की अपील है। दूसरा ये है कि परेशान हूँ, मसूफियत है कुछ, बस इस वजह से ना कम आती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है, रेडियो से मेरी अभी भी पहले जैसी मोहब्बत है, बस थोड़ी सी मसूफियत होती है, फिर जाहिर है इंसान को सब कुछ देखना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं, आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आप काफी ज्यादा परेशान है। अल्लाह ताला रशीद साहब को सेहत दें, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और टॉपिक के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो।
3: के हवाले से मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना मतलब काम कर दूं कि जो मतलब मेरी जिंदगी, मेरी आखिरत खराब हो जाए, उसके बाद ये कि मैं जिंदगी में रशीद साहब के बगैर ये नहीं तना ना रह जाऊँ, उनको खोने से डरती हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले डर था वालदैन को खोने का, वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह की रजा थी, तो अब मैं कहती हूँ कि जिंदगी में तना ना रह जाऊँ बस।
0: चाहे जी अल्लाह ताला आपकी सारी दिली ख्वाहिशात पूरी करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है
3: जी। आपके लिए मेरी गहरी दुआएं, अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे, आप बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये दुआ करूंगी तो करती भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको हासिदों के असद से, जालिमों के जुल्म से और बद नजरों की नजर से बचाए, और अल्लाह ताला आपको हर आफत से महफूज रखे। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी, अल्लाह आपको
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। और दोस्तों 1:35 हो चुके हैं, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक, मेरे साथ रहिएगा। लाइन सुनिएगा,

0: कभी किताबों में फूल रखना। दोस्तों ये फिर वही 90s के किड्स की बात आ गई। एक शुएब अख्तर ने एक जुमला बोला था 90s के, अब वो फिल्टर कर लेते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चे हुए थे, न्यूज़ हेडलाइंस बनी थी। तो हम भी 90s की काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो किताबों में फूल हमने भी रखे हैं। और मैंने एक दफ़ा ये भी जिक्र किया था कि एक दौर हुआ करता था लोग काफ़ी मोर के जो पंख होते हैं वैसे बड़ा खूबसूरत वो होता है, तो वो भी लोग रखा करते थे। कुछ लोग चीनी भी डालते थे कि पता नहीं दो हो जाएंगे, तो वो टेन्योर भी हमने देखा है फूलों के हवाले से भी। नए मतलब नेक्स्ट कॉल देखते हैं हमारे से कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कैसे हैं उधर सर आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रहा है हमारे साथ, कहाँ से? इस्लामाबाद से। और ये ट्रैक किताबों में फूल रखना, कभी रखे हैं फूल आपने?
1: हाँ अक्सर, हम बच्चे से बच्चे, मेरे पास एक डायरी अभी तक मौजूद है 1995, मेरा कॉलेज साइंस था।
0: अच्छा 1995 की डायरी, आप वो जो खुद लिखा करते थे उस वक्त, लोग शौकीन होते थे अपनी चीजें लिखना, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अभी भी मौजूद है आपके पास?
1: अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच गई। तो उसने मैंने उस दिन देखा था मोती के फूल ना, जैसे वो हम गजरा बनाते हैं ना, उस तरह धागे में धरोए थे वो, उसी तरह सूखे थे, उसके अंदर पड़े हैं अभी।
0: अरे क्या बात है, मतलब बड़ी पुरानी यादें आपने समेट रखी हैं। टॉपिक पे क्या कहेंगी कि मतलब बिगेस्ट फियर क्या है आपका, किस चीज का डर है?
1: डर की भी वैसे किस्में हैं अगर आप देखें तो, मतलब कुछ चीजों से डरना, कुछ फोबियाज होते हैं और कुछ ये तो जो साथी रिश्ते हैं उनके खोने का या जाने का खौफ, या किसी के बदल जाने का खौफ, मतलब खौफ की भी किस्में हैं। अगर
0: कॉकरोच ना आ जाए कितने। हाँ इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं जाएंगे कहीं पे। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। अच्छा तो ये आपने मैसेज भी किया था वालिदैन के हवाले से, आपने कहा था कि उनको आपने खोया है।
1: उनकी हर रोज डेली की कदर करें, उनसे डेली का इजहार करें, जो कहना चाहते हैं वो कह दें, क्योंकि मेरे अंदर कुछ चीजें रहेगी जो मैं कह नहीं
0: सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि वालिदैन से आप इजहार किया करें, अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं उनका ख्याल भी रखें। बहुत शुक्रिया मैम आपकी कॉल का, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर बिस्मा कहती हैं जी कॉल पिक करें, मैं कॉल रेंडमली पिक कर रहा हूँ, आप प्लीज़ हमें कॉल करें। आपने कहा जी शो अच्छा है, इसके अलावा आप पेरेंट्स को खोने से डर लगता है सबसे ज़्यादा, और बाकी आपकी फ्रेंड्स जो हैं फोबिया गर्ल आपको कहती हैं, और किस चीज़ का फोबिया है ये भी अगर आप मैसेज करके बता दें तो ज़रूर। बाकी कॉल्स हम बैक टू बैक शामिल करें जी, आप करें कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे आप?
2: खैरियत है, बस दिल कर पे रहा हम कुछ जी, आपने अल्फाज इस्तेमाल किए प्यारे भाई वाले
0: जी, करा
2: तारिक मोहम्मद बोल रहा हूँ कुहाट से।
0: तारिक साहब बात कर रहे हैं कुहाट से, तारिक साहब
2: मेरा बस हो गया कोई 3-4 दिन हो गए, मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, गला भी बैठा हुआ है ना
0: जी। जी आवाज से लग रहा है आपका गला बैठा।
2: आपका एक दोस्त है आरजे जिशान नासिर जिसको कहते हैं,
0: ठीक है?
2: बस उसको बताएं कि थोड़ा अपना लहजा ठीक है, देखे भी देखो जितनी कितनी आप हमारी बहनों ने आपको कार की, कोई भी डर नहीं रही, लहजे जगह से बात कर रही है ना,
0: ठीक है?
2: तो उससे जब कोई कॉल करता तो आगे से बस बंदे को इस तरह पड़ जाता है जिस तरह किसी ने उसका कर्जा देना।
0: नहीं ऐसी बात नहीं, उनका अंदाज मतलब ना हर
2: नहीं उसको बताया है, देखो सबसे बड़ी बात है अखलाक, अगर बंदे का अखलाक नहीं तो बंदा ही नहीं है फिर।
0: चलें इस पे बात करते हैं, आप टॉपिक पे मुझे बताएं कि
2: बस डर मुझे इस चीज से लगता है कि कभी मुझे किसी के साथ जिंदगी इतनी हमें ज्यादा ना हो जाए बस।
0: کیا بات ہے سر، اللہ تعالیٰ
2: کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو کسی کو برا بھی مت،
0: برا بھی مت کہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے.
2: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بتانا کہ طارق محبت نے گلہ دیا ہے.
0: ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، خیال رکھیں جی. طارق محبت صاحب، آپ کا نام بہت میٹھا ہے، آگے محبت لکھا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے، تو آپ ہمیشہ خوش رہیں. ذیشان بھائی ہمارے 101 کے بہت زبردست آرزے ہیں، نہ صرف 101 باقی بھی پلیٹ فارمز پہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ایک اپنا ان کا ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا، پروگرام کرنے کا، جیسے مانی بھائی کیا کرتے تھے پروگرام، اسی طرح نا ہر آرزے کا ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے. ہمارے بہت اچھے دوست محمد یوسف شاہ صاحب ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ یوسف سے تو میری تھوڑی سی اور پیار محبت ہے، میں اس سے کہتا بھی رہتا ہوں کہ کالر سے سخت بات کرتے ہیں شادی، آپ تھوڑا سا ہاتھ اللہ رکھا کریں. ذیشان بھائی کا ایک اپنا اسٹائل ہے، تو وہ آپ پلیز یہ دل پہ مت رکھا کریں، لیا کریں کہ وہ اخلاق کے حوالے سے، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہاں پہ جب بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. تو کبھی کبھی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ پریشان مت ہوا کریں، وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کال کرتے ہیں. نیکسٹ کال، السلام علیکم. اللہ لیو، السلام علیکم. نہیں چلے کوئی بات، یا السلام علیکم. نیکسٹ کال، السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
0: کیسے ہیں بھائی جان؟ سر نام دوبارہ بتائیے گا.
3: حمید گل عرض کر رہا ہوں،
0: حمید گل، حمید گل راول پنڈی سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
3: الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
0: اللہ پاک کا بہت احسان ہے. حمید صاحب آپ بتائیں، آپ کی صحت کیسی ہے؟
3: الحمدللہ، الحمدللہ. کی بات کر رہے تھے، ہر مختلف دور میں آپ کے ساتھ مختلف ڈر ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے.
0: بالکل سر، بہت اچھی بات کیا آپ نے.
3: ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے بڑوں کا ذکر کیا ابھی، مجھے ایک چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرا ایک دوست ہے طارق کیانی،
0: ٹھیک ہے،
3: سعودی عرب میں ہوتے ہیں.
0: ٹھیک ہے،
3: وہ آپس میں ہم بیٹھے تھے تو بات کرتا تھا، وہ بڑی پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی.
0: اچھا،
3: وہ کہتا تھا مجھے مفلسی سے بڑا ڈر لگتا ہے.
0: اچھا،
3: کیونکہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے.
0: اچھا،
3: تو میں نے کہا کہ اس وقت میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز زمانہ جب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے مفلسی کی اس سفید پوش کی اس خاموشی سے ڈر لگنے لگا ہے، جو کہہ نہیں پا رہے آپ.
0: ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، بڑی گہری بات کیا.
3: جو اپنی تکلیف کسی کو بتا ہی نہیں سک رہا ہے، اس کے اندر ایک ایسا خوف ہے،
0: بالکل ایسا،
3: اس کو اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں کہیں کھل نہ جاؤں.
0: بالکل ایسے بات.
3: اور اس شعر کے ساتھ اپنی سے اجازت چاہوں گا کہ سچ، آج کل سچ کہنے سے بھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے.
0: سچ کہنے سے ڈر لگتا ہے؟
3: میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ سچ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میرا اپنا شعر ہے کہ سچ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آفیت زدہ کر لگتا ہے.
0: کیا بات ہے، کیا بات، یہ آپ نے خود لکھے سر؟
3: پتہ نہیں لکھ لیا، بس کبھی کبھی کوشش کر لیتا ہوں.
0: چلے سر، بہت اچھا لکھا آپ نے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، انشاءاللہ پھر گپ شپ ہوتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. سارا علی کہتی ہے جی میری ڈائری میں بھی فرینڈس کے دیے ہوئے پھول، کارڈس، ہینڈ میڈ کارڈس ہم بنا کے دیتے تھے کارڈس. ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے یہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، اور یہ نا ایک بہت اچھی عادت بھی ہے، اور لکی ہیں اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اس وقت موجود ہیں. اب یہ ابھی آپ دیکھیں سیل فونز میں ہماری پھر ہوئی بات 90s کے بچوں کی، آپ کو نا بہت کم تصاویر ملیں گی، ملیں گی بھی وہ دوسرے ریل والے کیمرے کی تصویریں، پھر آپ ان کو ایچ ڈی میں کرواتے ہیں. آج کل AI کا دور ہے، وہ بھی آپ کو بہت اچھے پرنٹ میں مل جاتا ہے، لیکن لمیٹڈ بہت کم تصاویر ہوتی ہیں. لیکن آج کل کے جو اب بچے ہیں ماشاء اللہ 2010 کے بعد کے، ان کی والدین ڈھیر ساری تصاویر، ویڈیوز، یہ جب بڑے ہوں گے نا، ہمیں اب بہت زیادہ چیزیں نہیں یاد کہ ہمارے والدین نے، ہم نے تو بس کوٹی کھا دی اسی. تو ایک تو یہ چیز ابھی ریئلائز ہوتی ہے کہ اولاد کی اولاد سے نا بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، مطلب آپ کی جو اولاد ہے اس کی آگے، مطلب اب جو بچے ہیں جن کے دادا دادی حیات ہیں، اللہ ان کو सेहत वाली जिंदगी है, तो वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और बाजू कहा ना, हम गिला भी करते हैं, क्या जब हम ये काम करते थे सानू तो पैंदियां सन, इन्होंने तुसे कुछ नहीं कहते हो। तो ये है कि इन बच्चों की वीडियोज, इनकी बर्थडे, इनकी मतलब फलाना दिन, इनके स्कूल कॉलेज, बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो हैं वो अब सेव हो रही हैं। तो ये जब बड़े होंगे, कम से कम ये देख के ये तो कह सकेंगे कि यार तुसी साडे नाल बड़ा अच्छा टाइम पास किया है। तो ये चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा सेव हो रही हैं। तो पहले की चीज़ें वो उस दौर की कैसेट्स हुआ करती थी, लोग अपने मनपसंद गाने उसमें ऐड भरवाया करते थे, फिर सीडी का दौर आया, फिर इंटरनेट जब से आया, फिर यूट्यूब वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। दोस्तों 1:50 हो चुके हैं, आखिरी कॉल देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं, फिर आपसे हम भी चाहेंगे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। वालेकुम सलाम।
0: और सर जी अद लेट हो गया तुसी।
4: ये हाल है जनाब, ठीक ठाक हो जी आप?
0: मैं ठीक ठाक, तुसी अल्लाह ले हो, किथे चले गए से अद लेट हो गए हो?
4: भाजी मैं देखो जी, मैं ते उधर दा ट्राई करने है, काला ते काफी दफा लगी है ने, पर तुसी 540 वाला जेड़ा ना वो तेरा कट दे चुके आज।
0: नहीं नहीं सर, साढ़े को मैं तो दसा सैट एक ही है और लैना दो ए बस, रैंडम ही कॉल पिक होंगे। बाकी दसो सेहत शेत ठीक है थोड़ी?
4: हाँ दुआवां तुहाडियां माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है तुहाडी बात सुनी है
0: सर। अल्लाह
4: तो मैं अपने पे एक बात कहता हूँ, खिलौने तेरी जिंदगी क्या, सबका दिल बहलाएगा, एक दिन टूट ही जाएगा,
0: एक दिन टूट ही जाएगा।
4: ये जो दिल होता है ना जी, दिल खिलौना होता है, जब कोई बात करता है ये टूट जाता है। तो मैं तो यकीन माने ये डरता हूँ, इसलिए डरता हूँ किसी मेरे तरफ से किसी का दिल ना दुखे, मैं ये बात से डरता हूँ। और जो दिखाते हैं उनको भी चाहिए किसी का दिल ना दिखाए,
0: किसी का दिल ना दुखाए। बहुत गहरी बात की आपने सर जी, बहुत गहरी।
4: तो वो कहता है मंदिर ताजे, मस्जिद ताजे, ताजे जो कुछ टहनता है, दिल ना किसी का टाई, दिल च रब वैस देंदा है।
0: अरे क्या बात, क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत दुआएं, जितने बहन भाई आते सबको मेरा सलाम, आपको बहुत बहुत दिल से सलाम।
0: चलो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी। ये आज का था हमारा प्रोग्राम जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। टॉपिक हमेशा एंड पे जो कंक्लूड करता हूँ मैं, उसका मकसद क्या होता है, तो उसमें ये है कि आज पहले भी हमने बात की थी बहुत खूबसूरत रिश्तों को खोने के हवाले से। तो बाज़ुकात इंसान, आपने बहुत ज़्यादा इस तरह फील किया होगा कि इंसान को एहसास होता है कि यार जिस चीज़ का डर था या जो चीज़ से हम डरते थे माजद के साथ, अब वो ना कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता आपको होते हुए ना दिखाई देती हैं। और एक चीज़ हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि अल्लाह की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप हर चीज़ से वाकिफ नहीं होते, कुछ चीज़ों से लाइल्मी जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बाकी जो अहम रिश्ते हैं, आजकल हर कोई यही बात कहता है कि वालदैन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मतलबी हैं, मुंसलिक होती हैं चीज़ों से। आपने देखा होगा जो अच्छा कमाता है वो सबके लिए परफेक्ट है, वो अगर देर से भी आया किसी फंक्शन में तो ओके है जी, साढ़े जो सादा बंदा लेट आ गया तो पाई दिन तुम टाइम तो क्यों नहीं पहुँचते हो। तो ये ना ये दुनिया के रिवाज हैं, ये इसी तरह चलता आया या इसी ही तरह आगे निज़ाम चलता रहेगा, इसको हम नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो करंट टाइम आप गुजार रहे हैं अपने आप को। बाज़ुकात ना किसी कोई सख्त आजमाइश आप पे आई होती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, तो उस टाइम वो वक्त रुक जाता है, बड़ा आराम आराम से वो गुजरता है, तो इंसान को फील होता है कि यार ये टाइम खुदा ना ख्वास्ता आपकी दाढ़ में दर्द है, और दर्द वैसे होंदे भी रात ही उन्होंने, मतलब बंदा कितना डॉक्टर को जा सके कितने जावे, तो वो रात लंबी हो जाती है। और जब आप बहुत थकावट के शिकार होते हैं, आप सोते हैं पता ही नहीं चलता आपको कि कब सुबह होगी, रात कहाँ गई, तो वही लाइन है कि हर पल में ज़िंदगी है। कोशिश करें अपने साथ लोगों को खुश रख सकें, उनसे मुंसलिक जो खुशियाँ वाबस्ता हैं आपके बस में जो हो सकता है वो किया करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप किसी को चाहते हैं या किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो प्लीज़ उसको बताएं कि भाईजन ये आपके लिए मैंने काम किया है, मैंने कोई शौक नहीं है लेकिन थोड़े से कहता है कि तुम मैंने चंगे बहुत लगते हो, या ये मैंने आपकी मोहब्बत में किया, ये आपकी फ़िक्र में ये काम किया है, ताकि अगले बंदे को एहसास हो कि यार कोई है, कोई ख्याल रखता है। लेकिन उसके रिवर्ट में, उसके बदले में ये ना सोचें कि यार ये भी कदे करेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सब को इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करे, आमीन। दोस्तों ज़िंदगी शर्त है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप जानते हैं कि 101 से मुहर्रम अल हराम के जो पहले ये 10 दिन होते हैं, दिनों प्रोग्राम्स नहीं होते, फिर इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरे जो नेक्स्ट हाउस एट पी या दिग्गज जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मुहर्रम का आगाज़ हो जाएगा, तो प्रोग्राम्स नहीं होंगे, प्रोग्राम्स इन आयाम के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा, एक स्पेशल दुआ मेरे लिए ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए।
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए।